प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। हेलो हाय वेलकम नमस्ते नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 पर शुरू हो चुका है हम सभी का फेवरेट शो ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत ही ज्यादा मस्ती 90s मिक्स टेप है इसका नाम। वेल भाई वही बात है जो हम हमेशा करते हैं कि कभी कभी हम कोई साउंड सुनते हैं तो हम सीधा 90s के टाइम पर जी हाँ बिल्कुल पहुंच जाते हैं। एक वो आपको कर ये वाली साउंड आपको याद है, ये शार्पनर का इवॉल्व जो होना है वो भी हमने 90s में देखा हुआ है। फ्रॉम द नॉर्मल द मैनुअल शार्पनर्स टू दीज ये जो बड़े बड़े करके आते थे ना कि आप उसमें डालो तो आपको उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको शार्प करके दे। यू रिमेम्बर बट उसी के साथ साथ यू नो फोन की घंटी हो गई, जैसे ही कहीं पर ट्रिंग ट्रिंग मैं बोलूँ तो ऑटोमेटिकली यू नो दैट हम 90s की बात कर रहे हैं। एंड यू नो देर आर सो मेनी साउंड इफेक्ट एंड साउंड विच टेलीपोर्ट्स अस टू दैट अमेजिंग 90s का दशक। बट वेल एनीवेज ये सारी चीज तो है ही है, ये ऑब्वियस चीजें 90s की हम तो बात करेंगे ही करेंगे। हम वो टाइनी डिटेल्स जो है उसको भी पकड़ पकड़ कर अपना मेमोरी थोड़ा सा जॉग कराएंगे। यू नो इट हैड अ वेरी स्पेसिफिक टेक्सचर 90s का जो दौर था, स्कूल नोटबुक के जो मार्जिन है वो, देन मार्केट में वो लटकते कलरफुल प्लास्टिक टॉयज, ड्रॉइंग बुक के ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव स्केच पेन के कलर्स, क्रिकेट खेलते हुए किसी का परमानेंटली लास्ट बॉल बोलना, टेलर के पास कपड़े के साथ मैगजीन की फोटो लेकर जाना कि ऐसे करके बनवानी है, हेयर कट के बाद घर आके सबका रिव्यू लेना, एंड बॉलीवुड 90s का वो भी कितना ही इंटरेस्टिंग था। तो सब सब कवर किया जाएगा आज के एपिसोड। एक डेकेड को देखने का नहीं है, उसको सुनने का, स्मेल करने का, टच करने का, थोड़ा सा फिर से जीने का है। मैं आपकी 90s वाली आंत्रा, एंड बस रहिए मेरे साथ, यू विल हैव द मोस्ट अमेजिंग अमेजिंग 3 घंटा ऑफ योर टुडे, है ना? लेट्स गो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशन्स के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tissenson Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click dur.
4: GG.
3: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: भाई जुगाड़ का जो लेवल 90s वालों ने सेट कर रखा है उसको क्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल है। हम कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास है 90s वाला जुगाड़ फॉर एवरी सिंगल थिंग। रेडियो मस्ती 24/7, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ और चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s की स्कूल लाइफ में एक मिनी हार्ट अटैक कभी कभी आ सकता था। टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रही है, आप फुल स्पीड से नोट्स कॉपी करने की कोशिश कर रही है एंड सडनली आपका पेन चलना बंद हो जाता है। आप उसको खिच खिच खिच स्क्रिबल करते हो, साइड में कुछ नहीं निकल रहा। फिर उसकी रिफिल निकाल के देखते हो, आपको लग रहा है यार इसमें इंक तो है, तो प्रॉब्लम क्या है? सो 90s में पेन चलाना सिर्फ राइटिंग का स्किल नहीं था, ट्रबल शूटिंग का भी स्किल था। रेनॉल्ड्स 045 या सेलो का पेन या कोई भी आपका फेवरेट बॉल पेन हो, फर्स्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता था, नोटबुक जो भी आप यूज कर रहे हो उसका लास्ट पेज पे जाओ और वहां पे ऑलरेडी दुनिया भर के मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है, zigzag, circles, aggressive shading and all those things। जैसे पेन नहीं चला रहे, ECG स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि चल जाना यार थोड़ा सा चल जा, एंड देन एक टाइनी ब्लू लाइन दिखी एंड हम करते अच्छा हमारा पेन जिंदा हो गया, CPR दे के जिंदा करते थे हम ऐसे दो वर्ड्स लिखे फिर बंद हो गया। भाई ये कैसा धोखा। अब लेवल 2 की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, पेन को वायलेंटली ऐसे झटक झटक के शेक करना, टिप नीचे एंड टाक टाक टाक। देन रिस्क था, इंक कभी कभी नोटबुक पर में नहीं यूनिफॉर्म पर भी आ जाती थी। एंड देन केम द एडवांस्ड इंजीनियरिंग, पेन खोलो, रिफिल बाहर निकालो, टिप को इंस्पेक्ट करो लाइक अ ट्रेन टेक्नीशियन। कोई उसको हाथ पर रब करता, कोई पेपर पे प्रेस करता और कोई कोई लेजेंडरी लोग रिफिल के पीछे से ऐसे फूक मार मार के बॉस हम पेन में इंक नहीं भेज रहे थे, CPR मैं कह रही हूँ ना वो दे रहे थे। और क्लास में हर ग्रुप में एक सेल्फ अपॉइंटेड स्पेशलिस्ट होता ही होता था। आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो बोलेगा कि दे मैं चलाता हूँ यार तेरे, तू तो रहने ही दे, एंड यू काइंड ऑफ हैंड इट ओवर। वो दो स्क्रिबल्स करेगा एंड सडनली परफेक्ट ब्लू लाइन बहती हुई इंक की धारा चलने लगी एंड वी गो लाइक एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ में तो तुम चल नहीं रहे थे, इसके हाथ में रेनॉल्ड्स का कमबैक टूर ऐसे कैसे हो गया? सो वो पेन वापस आपको देते हैं विद दैट सुपीरियर एक्सप्रेशन दैट भाई चल तो रहा है, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट। एंड रेनॉल्ड्स 045 दैट स्लिम व्हाइट बॉडी एंड द ब्लू कैप, कितने पेंसिल बॉक्स का परमानेंट रेजिडेंट था। पेन भी स्कूल पर्सनैलिटी का पार्ट हुआ करता था दोस्त, किसी को फाइन राइटिंग चाहिए, किसी को डार्क इंक चाहिए, किसी का हैंड राइटिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर पेन से अच्छा आता था। एंड प्लीज टेल मी आई वॉज इन द ओनली वन हु बिलीव दैट ये तो मेरा लकी पेन है, एग्जाम तो मैं इसी पेन से दूंगी। एंड देन एग्जाम के बीच में वही लकी पेन कभी कभी डिसाइड करते थे कि टुडे आई रेस्ट, इमीडिएटली भाई इधर उधर से एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पेन है। एंड टीचर का आवाज आता था, टॉकिंग क्यों हो रही है मैम, चीटिंग नहीं स्टेशनरी एमरजेंसी है भाई। सो द होल थिंग, कोई भी चीज रिटायर नहीं हुआ करती थी 90s के वक्त में, गिव अप वाज नॉट एन ऑप्शन। पहले लास्ट पेज पर 400 सर्कल्स बना के उसके बाद उसको चलाना ही पड़ता था, करना ही पड़ता था। आज भी हम इसी उस पे चल रहे हैं, आपको नहीं लगता?

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
3: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
3: One ancient warning.
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
3: And then there is a man who crosses the boundary.
5: हमें चिंता नहीं उनकी।
3: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
5: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
3: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। Musty Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
7: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

कसर से कसर की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। पता नहीं 90s के वक्त में घर के वो स्टील के ग्लास में पानी कुछ एक्स्ट्रा ही ठंडा लगता था। टिल डेट आई फील समथिंग लाइक दैट। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और चल रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। नाउ मई जून की कड़कती दोपहर, आप बाहर से खेलकर घर आए हो, आपका चेहरा लाल हो रखा है, बाल चिपके हुए, पसीना से तर बतर सांसें ऐसी चल रही है जैसे ओलंपिक का फाइनल खेल के आप आ रहे हो। घर में आप ढूंढते हो पानी। अब पानी नॉर्मल ग्लास में आपको नहीं चाहिए, यू गो स्ट्रेट टू द फ्रिज, आप निकालते हो बॉटल और कबर्ड में से वो स्टील का ग्लास। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द साइंस सेज, बट 90s के जो बच्चे हैं ना, दे नो द ट्रूथ। फ्रिज का पानी स्टील के ग्लास में आते ही 20% ज्यादा ठंडा हो जाता था। पानी पोर किया, विद इन सेकेंड ग्लास के बाहर वो एकदम छोटे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो पूरा ग्लास ठंडा, इतना ठंडा कि पकड़ते ही वो ऐसी वाली आवाज निकलती थी। पर छोड़ेंगे ना, वो तो बिल्कुल नहीं होता, हमने सीखा ही नहीं है। दोनों हाथों से उसको पकड़ते थे, फिर कल्प कल्प कल्प कल्प कल्प बीच में, ऑफकोर्स अगर पेरेंट्स घर पे हो तो धीरे, एकदम फ्रिज का पानी मत पियो, दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्कोर जो है वो चलता रहता था। बट टू लेट, हाफ ग्लास जो है वो ऑलरेडी इनसाइड है। And then that one giant satisfied, बॉस 5-star बेवरेज का एक्सपीरियंस, कोई लेमन नहीं, कोई मिंट नहीं, कोई फैंसी आइस नहीं, पानी स्टील का ग्लास, एंड 90s में इट इज डन। और स्टील ग्लास की एक और स्पेशलिटी थी, उसमें ना मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कि थोड़ा पानी अगर कोई बोलता था कि ले आना, आप भर के ले आए राइट टिल द टॉप। अब बेडरूम तक जाते हुए स्टेप वन थोड़ा सा वो छलकता था, स्टेप टू फिर से छलक रहा है, बाय द टाइम आई थिंक जिसने मांगा है उधर पहुंचता, थोड़ा पानी वैसे ही इधर उधर हो गया है। और वेट स्टील ग्लास स्लिपरी लिटिल फेलो, ग्रिप जो है वो बड़ी केयरफुल करनी पड़ती थी, बिकॉज एक बार हाथ से निकला तो ऐसी, मतलब स्टील का ग्लास किसी मिडिल क्लास घर में नीचे जमीन पे गिरना और पूरे मोहल्ले को सुनाई देना, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। एकदम से ठंडा पानी नहीं पियो एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी साउंड्स फेमिलियर है ना, इट्स 90s का साउंड। लग्जरी का डेफिनेशन तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, गर्मी से घर आओ, फ्रिज खोलो, स्टील का ग्लास भरो और पहला सिप जैसे ही आए, जिंदगी सेट। क्या खूबसूरत दिन थे ना 90s के।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210. पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। तारीख पतारीख तारीख पतारीख तारीख पतारीख में लॉर्ड, जब भी हम ये कहते हैं हमारे सामने सनी देओल प्रकट हो जाते हैं इमेजिनेशन में कि भाई ये तो वही है वो। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है यहाँ पर। भाई 90s के बॉलीवुड वालों, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ समथिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। दामिनी मूवी का ये डायलॉग है विच बिकेम फेमस, एंड जैसा मैंने कहा तारीख पतारीख जज साहब सनी देओल क्लियर, सब क्लियर। सो कोर्ट रूम है, अमरीश पुरी जी इज ऑन वन साइड एंड देन दैट वॉइस व्हेन व्हाट हैपेंस। अब सनी देओल को तारीख पे तारीख करते हुए हटा दो, देयर इज नो सनी देओल सेइंग दिस डायलॉग, बट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल राइट भाई, क्योंकि सनी देओल और दामिनी का लॉयर गोविंद ऑलमोस्ट इनसेपरेबल है। हियर्स द ब्रिलियंट ब्रिलियंट जो है 90s का ट्रिविया जो मैं लेकर आई हूँ, आपको मजा ही आ जाएगा सुन के। सनी देओल वॉज नॉट ओरिजिनली सपोज टू प्ले ये वाला रोल, बट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी जो हैज कन्फर्म्ड इन फैक्ट दैट ही हैड एक्चुअली थॉट ऑफ ओम पुरी जी इस रोल के लिए। हिज आइडिया वॉज टू क्रिएट दिस पावर हाउस कोर्ट रूम का कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ओम पुरी and Amrish Puri ji. Now that is an alternate kind of 90s universe I would love to see. Om Puri ji versus Amrish Puri ji, two extraordinary voices, okay, courtroom, imagine karo wo intensity kya hoti, but it did not happen. According to director sahab, there was a misunderstanding between the producer and the Om Puri ji ke side, ek kuch fees ko lekar कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड फिर इन्होंने सोचा कि लेट्स ट्राई सनी देओल, एंड सनी देओल ऑफ कोर्स उन्होंने अग्री कर लिया। एंड बाय देन मतलब आई थिंक सनी देओल ऑलरेडी घायल के लिए कर चुके थे, ही वाज अ मेजर स्टार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, येट गोविंद डजंट इवन अराइव अर्ली इन द दामिनी मूवी इफ यू रिमेंबर। तो उन्होंने कहा कि द कैरेक्टर एंटर्स अराउंड रील नंबर 12 पे, एंड डिस्पाइट हैविंग अ बिग स्टार इन दैट रोल, ही डिडंट सडनली रीराइट द फिल्म टू ब्रिंग सनी देओल इन अर्लियर। संतोषी जी का पॉइंट ये था कि कैरेक्टर शुड एंटर व्हेन द स्टोरी नीड्स हिम। अगर आज की डेट में डायरेक्टर्स को ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो तारीख पे तारीख की कसम खा के कहती हूं मूवी चलेगी ही चलेगी, आपको नहीं लगता? आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हाई 90s के मूवी वर्क्ड and it still works when you rewatch them because it connects you and director gave you jab wo characters jab unki zarurat thi in the movie. Sahi mein yaar, sachi Damini movie ka gana to banta hai yaar, itni baat kar li hai na, chalo let's go.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: छब्बीस जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये भाई हर रेडियो स्टेशन का फेवरेट गाना है। कौन सा बताओ, गेस करो। बॉर्डर मूवी का, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ, और यहाँ चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई वॉल्यूम बढ़ जाता है, 1997 बॉर्डर मूवी, और फिर आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ जी की आवाज। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। उफ, मैं गाऊंगी नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा गाती हूँ। आप मतलब होश ही खो बैठोगे मैंने अगर गाना शुरू किया। दिस बी टू ब्यूटिफुल अ सॉन्ग टू सिंग एज वेल। एंड सडनली वेन एवर दिस प्लेज, यू आर नॉट कैजुअली लिसनिंग एनी मोर, बिकॉज दिस वॉज नॉट वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जो सिर्फ हिट हुआ, इट स्टेड विद अस। स्कूल फंक्शंस में सुना, अभी बताया 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में सुना, टीवी पे बॉर्डर बार बार रिपीट हुआ तब सुना, कसेट पे सुना, और कितने घरों में वो बॉर्डर की कसेट, ओ माई गॉड, इट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। बट हेयर इज द क्रेजी पार्ट, द मेलोडी इस गाने की जो है बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बर्ड सॉन्ग्स ऑफ 90s, इट वॉज वंस रिजेक्टेड। दैट्स राइट, इट वॉज रिजेक्टेड। अनु मलिक जो है वो एक इंटरव्यू में बता रहे थे, याद करते हुए, दैट ही हैड प्लेड अ वर्जन ऑफ दिस मेलोडिक आइडिया किसी और प्रोड्यूसर को, एंड प्रोड्यूसर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें, एंड ट्यून वॉज रिजेक्टेड। सो नॉर्मली कहानी वही खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट समवन एल्स इन दैट रूम जो है रिमेम्बर्ड कि भाई अनु मलिक साहब ने कुछ ऐसी धुन तो बनाई थी। कौन थे पता है वो? जावेद अख्तर जी। ईयर्स लेटर व्हेन बॉर्डर वॉज बींग मेड, जावेद अख्तर जी जो है ही रिमाइंडेड अनु मलिक कि तुमने वो एक धुन सुनाई थी ना उस दिन बैठे हुए, तो वो याद है? इमेजिन, यू नो, अ मेलोडी समबडी डिड नॉट वॉन्ट एंड इट वॉज रिजेक्टेड, हैड क्वाइटली स्टेड विद समबडी एल्स उनके दिमाग में, एंड देन केम अनदर सरप्राइज। अनु मलिक हैड डिस्क्राइब बींग गिवन पेजेस एंड पेजेस ऑफ मटीरियल इस गाने को बनाने के लिए, अकाउंट्स पुट इट एट रफली 11 to 15 pages, and his reaction was essentially, bhai, where's the normal chonka structure? Mukhda kahan hai? Antra kahan hai? Antra waise yahan pe hai. Because Sandeshe Aate Hai was not going to behave like a neat little filmy song. It had letters, ek longing ki, feeling, soldiers remembering home, families are waiting, and that recurring question of ki ghar kab aoge. So instead of forcing those words into conventional box, the composition jo hai grew into the emotion, and what emerged was nearly 10 minutes long. Think about that, aaj ki date mein hook within 15 seconds hai na in the world, a long song, no rush, it takes its time, millions listen to it, that whole thing. Because Javed Akhtar sahab ke words mein Anu Malik ki melody, Sonu Nigam and Roop Kumar Rathod ki voice, they were not merely giving Border a soundtrack, they were giving the film uska dard. And there's something I love about the rejected tune story, that we often think that iconic songs jo hai must have arrived with everybody immediately saying ki yahi hai wo, this is it. नहीं, समटाइम्स समबडी सेज नो, द ट्यून गेट्स पुट असाइड, टाइम पासेस, एक बंदे को याद रहता है, फिर वो एक सही फिल्म आती है, सही वर्ड, सही वॉइसेस एंड द राइट मोमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ मैजिक एंड सॉन्ग्स हैपेंड दैट टिल डेट, जो कि मैं अभी प्ले करने वाली हूँ ये वाला गाना, यू विल फील द सेम इमोशन, बिकॉज खून पसीना रूह जो डाली है इस गाने में, ओहो, अब तो सुन ही लेते हैं ऑन मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। कई चीजों का 90s में सलूशन होता था, धूप दिखा दे सब ठीक हो जाएगा, धूप दिखा दे। आजकल हम खुद ही को कहते हैं खुद को धूप दिखा दे, विटामिन सी की तुझे बहुत जरूरत है। रेडियो मस्ती 24/7 आंसर आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड ये बहुत ही नॉर्मल एक जो है लाइन है कि आज धूप अच्छी है, गद्दे बाहर निकाल दो। आपने भी किया होगा, नहीं याद आया, एक्सक्यूज मी, गद्दे को विटामिन डी, हाँ सॉरी विटामिन डी, विटामिन सी क्यों बोला मैंने, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है जो उनको बाहर जाना है। बट इफ यू हैव ग्रोन अप 90s के मिडिल क्लास हाउस में, यू नो दिस थिंग, एक अच्छी सनी मॉर्निंग मिली नहीं, सडनली घर का आधा बेडरूम छातिया बालकनी में शिफ्ट हो जाता था। गद्दे, रजाई, द पिलोज एंड द ब्लैंकेट सब लाइन से धूप जो है सेक रहे होते थे। बेसिकली फैमिली अंदर बेडिंग का गोवा ट्रिप बाहर चल रहा होता था। एंड मैट्रेस मूव करना इन इटसेल्फ वाज एन ऑपरेशन, ओके। एक साइड किसी अडल्ट ने पकड़ा घर में बच्चे, तो दूसरी साइड से बिल्कुल आपने पकड़ा, फिर तू तू है मैं, सीधा पकड़ो, पकड़ा तो है, नीचे मत घसीटो, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड समहाउ अ सिंपल मैट्रेस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 400 किलोस का मोमेंट एज अ चाइल्ड, जब उसको कहा जाता है कि उठाओ मदद करो मुझे, फिर छत पर उसको स्प्रेड करो, एक साइड धूप, थोड़ी देर बाद जो है इसको पलट देना होता है, बिकॉज अपेरेंटली गद्दे की टैनिंग भी इवन ही होनी चाहिए। और रजाई, विंटर के बाद जो हैवी रजाइयाँ धूप में जाती थी, दैट स्मेल, डू यू रिमेम्बर, आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड आई कैन जस्ट, या मेरे को वो स्मेल, आई इट्स सो स्ट्रॉन्ग, राइट, आई कैन नॉट प्रॉपरली इवन यू नो डिस्क्राइब इट। कपड़े की स्मेल, वॉर्म कॉटन एंड दैट सनशाइन, थोड़ी सी कबर्ड वाली स्टोर्ड स्मेल दैट इज काइंड ऑफ डिसअपीयरिंग, एंड व्हेन यू टच इट, गरम। नेचुरली यू नो बच्चों का फर्स्ट इंस्टेक्ट होता है हेल्प, ऑफ कोर्स नॉट, आपने छत पे रख दिया है, बालकनी में रख दिया, भाई जंप, उस पर जंप करने में क्या मजे आते थे। अंदर डांट पड़ती थी कि उतर जाओ, धूप लगने दो, हम कहते थे बस एक मिनट, वन मिनट यू नो बिकम्स रेसलिंग मैच और अ पिलो फाइट, एंड समवन काइंड ऑफ लाइज डाउन ड्रामेटिकली कि मैं भी धूप साथ में, गद्दे के हम ही सेकेंगे। एब्सोल्युटली यूजलेस वर्क फोर्स डूइंग ऑल दोज अमेजिंग 90s वाली थिंग। एंड देन केम द डस्ट बीटनिंग सेरेमनी, गद्दा या रग जो है उसको खड़ा करके वो सीख वाली झाड़ू से या फिर हाथ से ही थाप थाप थाप थाप, और फिर वो डस्ट के क्लाउड्स निकलते थे, एंड एवरीबडी यूज टू गो कितना गंदा हो गया है, एज इफ वी हैव पर्सनली डिस्कवर्ड पोल्यूशन, इतनी मिट्टी थी इसमें। एंड देन फिर दूसरी हिट थाप थाप, एंड वियर्डली वेरी वेरी सैटिस्फाइंग। बट माई फेवरेट पार्ट वॉज इवनिंग, क्योंकि जब धूप कम होने लगती थी, एवरीथिंग कम्स बैक इन साइड, फ्रेश बेड शीट, वॉर्म मैट्रेस, पिलोज समहाउ वर फ्लफियर, एंड एट नाइट वेन यू गॉट इन टू द बेड, देर वॉज दिस वेरी पर्टिकुलर सन वॉर्म्ड काइंड ऑफ स्मेल, मतलब लिनन मिस्ट नहीं था, फ्रेश कॉटन फ्रैगरेंस, आजकल तो बहुत कुछ निकल गया है, इट वॉज दैट धूप का स्मेल, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो राइट, आई एम श्योर यू नो, तभी तो आप सुन रहे हो और इमेजिन भी कर रहे हो मेरे साथ मस्ती 90s मिक्सटेप पर।

रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। I have two very funny memories isse, and I understand why my mom is like this. Radio Masti 24/7 antar aapke saath Masti 90s mixtape. Ye hai is shandar show ka naam. Bhai 90s ke parents ko agar aaj ki ripped jeans doge to wo silenge hi na. उनका रिएक्शन फैशन पर नहीं होता है, उनका रिएक्शन होता है कि इसके पूरे पैसे दिए हैं और बहुत सारे पैसे दिए हैं। बिकॉज हमारे बचपन में जीन्स का नी की तरफ से जो हमारे हाँ वहाँ पे फटने का स्टाइल ही नहीं था ना, दैट वॉज एन इंसिडेंट। एंड यूजुअली कैसे होता है ना कि गली में आपने क्रिकेट खेला या फिर आप साइकिल से गिर गए, स्कूल से आके यू नो ग्राउंड में स्लाइड मार दी और घर पहुंचे नहीं कि सीधा दिख जाता था मम्मी को कि ये कैसे फट गया। हाँ, एंड देन आप नी चेक कर रहे हो कि चोट लगी या नहीं लगी, मम्मी जीन्स चेक कर रही है, नई जीन्स थी तो ऐसे देखो फट गई ना। अब प्रायोरिटीज, आई मीन टेल मी अबाउट इट, बट जीन्स फट गई मतलब जीन्स खत्म नहीं हुई है। मैं कह रही हूँ ना 90s में हम कोई चीज छोड़ते नहीं थे। 90s के घरों में रिपेयर डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता था कि इस पे पैच लग जाएगा। एंड दिस वर्ड पैच, कितने कपड़ों की जिंदगियां बढ़ाई हुई है इसने। मैचिंग डेनिम मिल जाए तो बहुत ही शानदार। यूजुअली शेड हमेशा ही इस पैच का कुछ और ही होता था कि जीन्स डार्क ब्लू है, पैच इमोशनली ब्लू, टेक्निकली पर्पल। कभी पैच अंदर से लगता, कभी ऊपर स्टिचेस क्लियरली विजिबल होती, कभी टेलर रेक्टेंगल जो है वो वहाँ पे बना देता, और कभी मम्मी क्रिएटिविटी दिखा दे तो फिर यहाँ कोई डिज़ाइन भी लगा देते थे, है ना। सो नाउ यू हैव रैंडम अ स्टार और अ फ्लावर और अ बैच काइंड ऑफ अ थिंग सिटिंग एग्जैक्टली ऑन योर नी। That is fashion by accident. Tell me about it, because a lot of big, really popular brands, they are doing the same thing, getting all of these things. ये सारी चीजें करके जो हमारी मम्मियाँ कर चुकी है वो मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में बेच रहे हैं। बट फिर उसके बाद लेट्स गो बैक टू द 90s। सो अगले दिन वो जीन्स पहनकर आप फ्रेंड्स के सामने जाते हैं एंड फ्रेंड्स कहते हैं ओए पैच लग गया एंड ऑल दोज थिंग्स। आई वॉज या थोड़ा एम्बेरसिंग लगता था, बट आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता था। दैट फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स, we didn't want to throw it away either, right? Because ek bar pair becomes this perfectly comfortable thing, भाई अटैचमेंट हो जाता है। एंड आई हैव गॉट दिस अटैचमेंट विद ऑल माई जीन्स। जब तक उनके हालात गंदे नहीं हो जाते हैं आई जस्ट डोंट लेट इट गो। एंड दैट्स व्हाट जीन्स इज सपोज टू डू ऑल्सो। जब आपका एक कंफर्ट लेवल धो धो के और ये पहन पहन के सेट हो जाता है ना, इट बिकम्स काइंड ऑफ योर गो टू थिंग्स। वो दो तीन चीज़ें ही आप जीन्स बदल बदल के जो है पहना करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरा रिप्ड जीन्स जो है देख कर, सिंगापुर में आई हुई थी, सिल दिया था। आई केम बैक, मैं गई मस्ती से शो वो करके वापस गई एंड सडनली आई एम सीइंग दैट एंड शी वाज सो प्राउड कि आई फिक्स्ड इट एंड आई कुडंट लाइक, वो इतनी ज़्यादा खुश थी एंड आई वाज लाइक, एंड कितना महंगा आता है रिप्ड जीन्स आपको पता ही होगा, लिवाइज की जीन्स थी वो। मैं आज तक नहीं भूल पाई ये हादसा जो मेरे साथ हुआ। इनफैक्ट इस एक जीन्स के चक्कर में हमारे घर का जो है किचन वाला कपड़ा भी बन चुका है, वो बड़े एक्सपेंसिव शौक हो गए मेरे। सुनते रहिए मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyanka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: Un pairon par kisi kali अनजानी शक्ति का पहरा था।
0: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
0: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
0: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
0: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो। जिनकी शेर सवारी है।
0: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

अगर ताल की कसेट या सीडी थी, देन आई हैव अ फीलिंग उसका रिवाइंड बटन आपका काफी ही बिजी रहा होगा, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ दोज एल्बम्स जहां पे फेवरेट सॉन्ग चूज करना इटसेल्फ वाज वेरी डिफिकल्ट. ताल से ताल मिला जो टाइटल ट्रैक था, देन देयर वाज इश्क बिना क्या जीना यारो, नहीं सामने तू, रमता जोगी, एंड सडनली व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ऐश्वर्या राय के डांस मूव्स एंड अनिल कपूर का वो फुल फ्लैम्बॉयंट विक्रांत मोड एंड अक्षय खन्ना, एवरीथिंग कम्स फ्लडिंग बैक. बट ताल के म्यूजिक के पीछे जो प्रोसेस था ना, वो भी ऑलमोस्ट एक फिल्म के बराबर है. सो AR रहमान का म्यूजिक था, वी ऑल नो राइट, एंड ही सेड दैट द टाइटल ट्रैक ताल से ताल मिला वाज वन ऑफ द टफेस्ट सॉन्ग्स फॉर हिम टू क्रैक. एट वन स्टेज ही हैड अराउंड 13 डिफरेंट म्यूजिकल आइडियाज उसके लिए. 13. हम 90s में कैसेट पर एक गाना चूज नहीं कर पाते थे, रहमान साहब एक गाने के लिए 13 पॉसिबिलिटीज बना रहे थे. एंड ताल वॉज नॉट मेड इन अ हरी ईदर भाई. सुभाष घई साहब कहते हैं ही स्पेंट अराउंड 70 nights working on film ka music, while Rehman sahab jo hai, he spent months on the score. And also, like he used to work like 9 PM to 6 AM, so he was like totally into it. But here's one of my favorite stories, and I was like, chaliye baat karte hain. Gana tha ishq bina kya jeena yaro, ishq bina kya marna. It actually existed even before the movie was started and usko banana shuru kiya gaya tha. So Rehman sahab and Subhash Ghai sahab, earlier they had been working on this another film, Shikhar naam ki ek movie thi. Now that film never got made, and one of its compositions, yeah, that survived, and it was this gana Ishq Bina. Years later it found its home in Taal. Rehman sahab himself jo hai, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये शिखर के लिए बनाया गया था. एंड देन रहमान साहब डिड समथिंग फैसिनेटिंग विद द सॉन्ग, लेट मी टेल यू अबाउट दिस. सो फॉर कमिता कृष्णमूर्ति जी का वर्जन, ही सेज दैट उन्होंने रिकॉर्ड किया था अराउंड 15-16 मिनट्स, बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू कीप इम्प्रोवाइजिंग रादर देन सिंपली सिंग वन फिक्स्ड वर्जन. सो घई साहब रिमेंबर्ड कि एक्सपेक्टिंग द सेशन टू टेक मे बी एक घंटे में हो जाएगा. इंस्टेड रहमान साहब केप्ट सेइंग कि कविता जी अगेन कीप गोइंग. कविता जी कंटिन्यूड singing over looping rhythm for hours. Why? Because Rehman sahab was waiting for those unexpected little moments jahan par magic hoga. And suddenly I kind of hear that album differently, because we remember Taal as this incredibly polished 90s ka soundtrack, but behind that polish was experimentation, multiple tunes, long nights, and it was almost getting abandoned, right? But then Taal happened and the song got home. And what a home is that. Abhi main yahi gana play karne wali hoon, and we are going to listen to it in a very different manner once again on Radio Masi 24/7.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live. 75.

0: मुसल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: Oh God, it seems like I have got too many Rehman Sahab stories 90s ki baat karte hi, but this is what it is. Rehman Sahab was doing his thing in the 90s. Radio Masti 24/7 Antrop ke saath Masti 90s mixtape aap sun rahe ho. Ek aur gaane ke bare mein main batana chahti hu, and this is one of those songs jahan par we completely live it. कहीं पर भी आप बजा दो जैसे ही उसका हुक वाला वो आता है ना, हम लोग स्टेप्स भी कर देते हैं, फ्रॉम कोरियोग्राफी टू द सिंगिंग टू द सॉन्ग, एवरीथिंग वाज सो वेरी परफेक्ट। 1998 मूवी का नाम दिल से चला चाहिया चाहिया चाहिया चाहिया। ए आर रहमान का बीट शुरू होता है, सुखी पाजी की आवाज आती है, स्क्रीन पर शाहरुख खान और मलाइका अरोरा मूविंग ट्रेन के ऊपर कर रहे हैं छैया छैया। बॉस 90s बॉलीवुड गेव अस प्लेंटी ऑफ आई iconic song visuals, है ना? You would agree with me on that. But this one, train दिखे और दिमाग में गाना automatically start हो जाता है. But here's the fantastic part, that moving train, the original plan तो वो था ही नहीं. So Farah Khan was saying in one of her interviews that the initial idea was to shoot ये छैया छैया वाला गाना ऊटी के रेलवे स्टेशन पर. SRK यानी कि हमारे 90s वाले शाहरुख खान, उनका कैरेक्टर would see this बंजारा woman स्टेशन पे, वो मिलता है उसमें, and the dancing would happen around the tracks. ठीक है, सिंपल इनफ, एक्सेप्ट दे नीडेड द स्टेशन फॉर सेवरल डेज शूटिंग के लिए। रेलवे अथॉरिटीज बेसिकली सेड, भाई स्टेशन बंद करके आपको शूटिंग करा दे, दिस इज नॉट हैपनिंग, परमिशन नहीं मिली। एंड समटाइम्स बॉलीवुड मैजिक बिगिंस विद प्लान ए कैंसिल, दैट्स व्हेन मणि रत्नम साहब जो है उन्होंने ये ऐसे, उनको याद आया दैट ही हैड प्रीवियसली शॉट एक एक्शन सीक्वेंस जो कि ट्रेन के ऊपर था, एंड देन ही सजेस्टेड दैट व्हाई डोंट वी ट्राई आउट something like this. Farah Khan ka reaction, interesting, let's try it, let's do it, and she followed it very quickly. I'm just guessing by that ki wait, moving train ke upar choreography karenge kaise waise. Here's where it gets crazier. Farah said that they didn't even get the train beforehand to rehearse on it. They got a alternate railway track between Ooty and Konur and a steam engine, and they climbed aboard and then they started figuring it out. शूटिंग को चार दिन लग गए छैया छैया के। थिंक अबाउट द कोरियोग्राफी फॉर अ सेकेंड, ठीक है, नॉर्मल डांस फ्लोर, नो, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ट्रेन रूफ, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड डोंट गो एनी फर्दर लेफ्ट, नहीं, देयर वाज नो ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, कि जहां पे आप पीछे का माहौल ही बदल दे, द माउंटेन्स आर मूविंग बिकॉज दे आर एक्चुअली मूविंग। Farah Khan also, she remembered that there were no safety harnesses during that shoot, and thankfully there were no mishaps as well. Malaika Arora jo hai, later she remembered that Shahrukh was very concerned about unki safety, Malaika ki safety, and wanted her harnessed, but she felt that she couldn't properly khul ke dance nahi kar pa rahi thi because of the harness, and Shahrukh Khan apparently safety was not his biggest concern. So Farah Khan jo hai says Shahrukh got so enthusiastic that he wanted to climb onto the train's chimney also. They had to literally pull him down. होता है ब्रो, ये सब कुछ होता है 90s में, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं ये लोग। रेडियो मस्ती 24/7 पर, स्टे ट्यून्ड विद मी, लेटिंग यू डू द छैया छैया विद द सॉन्ग।

0: खाओ।
1: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.
3: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
4: Suat.
3: Join Kariye inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
5: प्रेम, निशा,
6: राहुल,
5: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
7: चलिए 90s का ना एक बाथरूम मेमोरी टेस्ट करते हैं। तैयार हो आप? रेडियो मस्ती 24/7 पर, जी हाँ, मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है। मैं हूँ 90s वाली यात्रा आपके साथ। आप नहाने गए, सोप डिश में लाइफ बॉय या कोई भी साबुन उसमें पड़ा हुआ है, ऊपर से परफेक्टली नॉर्मल, आप उसको कॉन्फिडेंटली उठाते हो और नीचे उंगली गई, स्क्विश। बॉस, 90s बाथरूम में सोप का एक साइड होता था, या एक साइड तो नॉर्मल होता था, दूसरा साइड हलवा होता था, बिकॉज किसी ने सोप यूज किया और वेट सोप को सीधा उस सोप डिश में ऐसे ही रख दिया जिसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी जमा हुआ था। नाउ यू कैन विजुअलाइज, करेक्ट, राइट? बस अब वो बेचारा ओवरनाइट मैरिनेट हो रहा है, सुबह तक बॉटम लेयर जो है उसकी सॉफ्ट हो जाती थी, एकदम स्लाइमी स्लाइमी जेली टाइप। एंड सबसे डेंजरस पार्ट, उसको सोप डिश से निकालना, टू मच प्रेशर, तो वो सोप ना पिसल के हाथ से निकल जाता था, आधा सोप आपके हाथ में, आधा डिश में, एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन। और बाथरूम से इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की, भाई सोप इसको किसने पानी में छोड़ा था? साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। अपेरेंटली नोबडी यूजेस सोप ऑल ऑफ अ सडन। मैंने नहीं, मैं तो अभी आया, कल भैया नहाया था, ये था वो था। पुअर सिबलिंग इजंट इवन इन द रूम एंड हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, एंड वी यूज्ड टू डू दैट सो ऑफ्टन। मम्मी का सोल्यूशन कि भाई यूज कर लो, कुछ हुआ तो नहीं है, सोप ही तो है यार, ये क्या गिलगिला पिलपिला, तुम लोग के नखरे बहुत ज्यादा होते थे। एंड बट वेस्ट नहीं कर सकते ना, 90s में कुछ भी हम वेस्ट नहीं कर सकते थे, एब्सोल्युटली नॉट। सॉफ्ट पार्ट भी यूज होगा। एक्चुअली उस वक्त सोप की लाइफ साइकिल काफी ड्रामेटिक ही थी, हम कई बार बात कर चुके हैं। ब्रांड न्यू बार, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, शार्प एजेस, लोगो क्लियरली एम्बॉस्ड है उसमें। फर्स्ट फ्यू बाथ्स के बाद एजेस राउंडेड हो जाते हैं, लोगो डिसअपीयर हो जाता है, इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल यू आर होल्डिंग दिस टाइनी स्लिपरी पीस बिटवीन द टू फिंगर्स, थिंकिंग कि इससे बॉडी वॉश कैसे कर सकते हैं। और टाइनी सोप का एक और टैलेंट, हाथ से निकला बाथरूम के फ्लोर पे दूसरे एंड पर, उसको पिक करो, अगेन हाथ से फिसल जाए। एंड एट दिस पॉइंट आप नहा नहीं रहे हैं, आप सोप के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। एंड द सोप डिश इटसेल्फ, वो प्लास्टिक वाली, एंड देयर वर पर्टिकुलर कलर्स आल्सो, वो जो एक पाउडर ब्लू कलर की या फिर जो है येलो कलर की, नीचे टाइनी होल्स होने चाहिए ताकि वाटर ड्रेन हो जाए, बट समहाउ वाटर स्टिल मैनेज टू कलेक्ट। ओके, साइंस लिटरली गेव अप, मम्मी डिड नॉट, सोप यूज करते करके खड़ा रखो उसको, पानी निकालो, डिश साफ करो। These were the bathroom SOPs before even we knew what SOP meant actually. Dude, यार मजा ही आ गया यार। मैं सच्ची ये शो करती हूँ और मैं लिटरली उस मोमेंट में पहुंच जाती हूँ जिसको मैं खुद ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। एंड आई होप दैट इट हैपेंस विद यू एज वेल व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मस्ती 24/7, द मैजिकल मस्ती 90s मिक्स टेप चल रहा है यहाँ।

0: किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज के स्कूल यूनिफॉर्म का एक पार्ट था जो सुबह घर से निकलते वक्त तो फुल डिसिप्लिन में होता था, बट स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसका डिसिप्लिन खत्म हो जाया करता था। क्या है बोलो बोलो, रेडियो मस्ती 24/7 आंट्रा के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई सॉक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सॉक्स। सुबह जो है एकदम परफेक्टली रेडी किया हुआ यूनिफॉर्म, शर्ट्स टक्ड इन, बेल्ट एकदम स्ट्रेट, शूज पॉलिश्ड एंड सॉक्स प्रॉपरली पुल्ड अप, नीचे मत करना। ऑफ कोर्स कट टू 10:30 बज गए हैं सुबह के, एक सॉक अभी भी समहाउ काफ पर सर्वाइव कर रहा है, दूसरा एंकल पे बैठा हुआ है, इट हैज रिजाइंड, एंड आप हर 15 मिनट में उसको ऊपर खींचते हैं। यू नो, जब आप स्कूल में चल रहे हो और आपका सॉक एक नीचे हो जाता है तो यू वॉक 5 steps एंड स्लोली आप उसको जो है ऊपर खींच लेते हो एंड कहते हो भाई तुझे ऊपर रहने में प्रॉब्लम क्या है। सो 90 स्कूल सॉक्स का एक इलास्टिक जो है एक पॉइंट के बाद इमोशनली गिव अप कर देता था, स्पेशली वो लॉन्ग वाइड यूनिफॉर्म के सॉक्स। न्यू पेयर परफेक्ट, ब्यूटिफुल, परफेक्ट ग्रिप रहती थी उसकी, बट कपल ऑफ मंथ्स लेटर वो ऐसा ढीला ढाला सा हो जाता है, एंड समहाउ वन सॉक वॉज ऑलवेज वर्स, लेफ्ट वन। एक्सलेंट एम्प्लॉई, राइट वाला, सर्विंग नोटिस पीरियड, एंड नाउ इनोवेशन यहाँ पे चालू होता था। टॉप को फोल्ड करो, डबल फोल्ड, मे बी इलास्टिक टाइटर हो जाए, नहीं पुल इट एक्स्ट्रा हाई, मे बी नीचे आते आते करेक्ट पोजिशन पे रुक जाएगा। ब्रिलियंट थ्योरी बट अ वेरी मच फेल्ड एक्सपेरिमेंट। एंड देन देयर वॉज पीई का पीरियड, यू आर रनिंग एंड जंपिंग एंड प्लेइंग, एंड बाय द एंड सॉक्स का यूनिफॉर्म से कोई रिश्ता ही नहीं रहा, शूज के अंदर गैदर हो जाते थे यार, हील के नीचे आ रहे हैं, आप एक कॉर्नर में खड़े होकर शू को थोड़ा सा लूज कर रहे हो, मतलब सॉक की एक्सट्रैक्शन सर्जरी चलती थी उस टाइम पे। बट द डे व्हेन सॉक्स एब्सोल्युटली हैड टू कोऑपरेट, व्हिच वाज स्कूल फोटो डे, ओ बॉस, दैट मॉर्निंग एवरीथिंग वाज इंस्पेक्टेड, आपका हेयर नीटली टाइड अप, बैच स्ट्रेट होना चाहिए, शूज एक्स्ट्रा चमक रहे होने चाहिए, यूनिफॉर्म में क्रीज जो है एकदम एकदम वैसी, सॉक्स पुल देम अप, क्लास फोटो से 2 मिनट पहले टीचर, एवरीबॉडी टक इन योर शर्ट्स, टाई स्ट्रेट, सॉक्स पुल अप, एंड या एवरीबॉडी यूज्ड टू पुल इट अप बिकॉज द फोटोग्राफ वॉज परमानेंट। आपका स्माइल वियर्ड हो जाए, आईज आधी बंद हो जाए, फाइन, बट लूज सॉक्स, ये तो एविडेंस फॉर एवर हो गया। अब मैं तो एक और चीज किया करती थी, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी, मैंने कहा ना 90s में कोई भी चीज जल्दी रिटायर नहीं होने देते थे, तो जब मेरे सॉक्स के ऊपर वाली जो इलास्टिक है वो ढीली हो जाती थी ना, तो उसका एक जुगाड़ ये निकालते थे हम लोग कि वो जो रबर बैंड्स होती है ना, तो रबर बैंड्स को हम लोग वो पैर में ऐसे पहन लेते थे, एंड आई यूज्ड टू टेक इट टू द टॉप एंड देन ऊपर से उसको फोल्ड करते थे। सो बेसिकली ऐसे तो इलास्टिक ढीला हो गया है, बट आई हैव पुट दिस मेकशिफ्ट इलास्टिक द रबर बैंड टू जस्ट हैंडल द होल थिंग। चलता है, दिस ट्रिक वर्क्स, यू कैन ट्राई इट, लाइक आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स दैट या आई थॉट, बट आई एम श्योर दैट यू नो इट ऑलरेडी। ये है मस्ती 90s मिक्सटेप।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: हाँ जी हाँ जी, ये कसेट आज मस्ती 90s मिक्स टेप की बस यहाँ पर खत्म होने वाली है। आज का सफर लगाना कमाल का। एक पेन था जिसमें इंक पूरी थी और कॉन्फिडेंस जीरो। स्टील के ग्लास में पानी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ठंडा हो गया। दामिनी ने याद दिलाया कि एक कास्टिंग डिसीजन कैसे सिनेमा की हिस्ट्री बदल सकता है। संदेश से आते हैं कि रिजेक्टेड धुन जो है ने इवेंचुअली पूरी जनरेशन को इमोशनल कर दिया। गद्दे धूप सेकने चले गए, फटी हुई जीन्स को रिटायरमेंट नहीं पैच मिल गया। ताल के म्यूजिक के पीछे कितनी एक्सपेरिमेंटेशन छुपी थी। और रेलवे स्टेशन का प्लान कैंसिल हुआ तो बॉलीवुड को मिल गया चल चाहिए ऑन अ मूविंग

brings back a completely random Thursday afternoon. स्कूल से आए हो, बैग एक तरफ फेंका, यूनिफॉर्म चेंज की, किचन में कुछ खाने को ढूंढा, टीवी चल रहा है, कहीं से फिल्म के गाने की आवाज आ रही है, नीचे गली में फ्रेंड्स बुला रहे हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि दिस वेरी ऑर्डिनरी डे विल समडे बिकम द लाइफ यू विल मिस रिमेम्बरिंग. एंड दैट्स व्हाई 90s हिंदी सिनेमा भी मेमोरीज को इतना टाइटली कनेक्ट करता है. दामिनी, बॉर्डर, ताल, दिल से, टाइटल्स याद है ऑफकोर्स, बट उनके साथ अपनी लाइफ भी याद है. गाना कहाँ सुना था, कसेट किसकी थी, फिल्म किसके साथ देखी थी, कौन सा डायलॉग स्कूल में रिपीट किया था, कौन सा डांस स्टेप सीक्रेटली ट्राई किया था बाथरूम में शीशे के सामने खड़े हुए, सिनेमा स्क्रीन पर चल रहा था और पैरेलल में हम बड़े हो रहे थे. सो आज अगर कोई पुराना 90s का गाना रैंडमली यू ही आप इसके अलावा बच जाए, स्किप मत कर देना. देखिए मेमोरी आपको कहाँ लेकर जाती है ना. यह है मस्ती 90s मिक्स टेप, आपसे लेती हूँ यहाँ इजाजत. कैलेंडर तो 2026 में ही रहेगा बॉस, पर दिल के पास एक छोटा सा परमानेंट 90s का कॉर्नर है, उसको रेनोवेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Would leave you with this thought. Bye bye and take care. Aur sunte rahiye Radio Masti 24/7. Aapki 90s wali antra aapka karegi yahi pe intezar.

आप सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। आप सुन रहे हैं रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो स्टेशन सिंस 2009। और जिस आवाज को भी आप सुन रहे हैं, जिसने आपका स्वागत किया, उसे आप प्यार से कहते हैं समर लेजेंड्स वाला। और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बॉलीवुड के मशहूर मारूफ सितारों की महफिल, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। 1943 की मुंबई की एक सुबह आई है। राइटर राजा राव ने अपने छोटे से कमरे के फर्श पर सोए हुए एक 20 साल के स्ट्रगलिंग एक्टर लड़के को झंझोड़ते हुए उठाया। लड़का आंखें मलते हुए उठा तो राजा राव ने कहा, एक्टर मोतीलाल से मिलोगे?

श्रीकाल एंड अ वेरी वार्म हेलो सिंगापुर। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो स्टेशन सिंस 2009। और जिस आवाज को भी आप सुन रहे हैं, जिसने आपका स्वागत किया, उसे आप प्यार से कहते हैं समर लेजेंड्स वाला। और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बॉलीवुड के मशहूर मारूफ सितारों की महफिल, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। 1943 की मुंबई की एक सुबह आई है। राइटर राजा राव ने अपने छोटे से कमरे के फर्श पर सोए हुए एक 20 साल के स्ट्रगलिंग एक्टर लड़के को झंझोड़ते हुए उठाया। लड़का आंखें मलते हुए उठा तो राजा राव ने कहा, एक्टर मोतीलाल से मिलोगे? मोतीलाल उसी बिल्डिंग में एक आलिशान फ्लैट में रहते थे और एस्टैब्लिश एक्टर थे वो। राजा राव ने जब उस लड़के को मोतीलाल से मिलवाया तो मोतीलाल ने लड़के से पूछा, बरखुरदार कौन सी चीज तुम्हें लाहौर से यहाँ मुंबई ले आई? घबराए लड़के ने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, वही जो आपको दिल्ली से यहाँ तक ले आई सर। तो स्टार बनना चाहते हो? मोतीलाल जी ने कहा। लड़के ने कहा, आपके जैसा। लड़के की आंखों में हौसला देखकर मोतीलाल ने कहा, मुझसे बेहतर क्यों नहीं? बस फिर क्या था सिंगापुर, वो लड़का स्टार बना और सबसे बेहतर स्टार बना। इतना बड़ा स्टार बना कि आज तक हिंदी सिनेमा उसकी रोशनी में जगमगाता है और उस स्टार का नाम है द एवरग्रीन देवानंद।

जल्दी जल्दी बोलने का अंदाज, तेज चलने का स्टाइल, चुटकी में लिए फैसले और पल भर में बनाए दोस्त, ये अंदाज था देवानंद का। एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मों में रोमांस का दूसरा नाम देवानंद हो गया था, जो हमेशा नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर देते हैं। तो सिंगापुर आज के शो में हम इसी लेजेंड के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के सुपरहिट गाने सुनेंगे। सो कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव।

पे जिस तरह शाम का

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
5: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
6: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
7: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
5: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
6: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
8: जीजी
6: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, or bhi bahut sare wholesome healthy options.
8: GG Mart, your personal grocer.

0: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ और आज दीवानंद स्पेशल है। दीवानंद साहब का नाम आते ही एक अलग सी एनर्जी आ जाती, नहीं एक चेहरा सामने आ जाता है, यूं लगता है जैसे एक इंसान हेट लगाए स्कार्फ हाथ में लिए और टेढ़ी गर्दन किए हुए कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि
1: आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिए जाए।
0: जी हाँ, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी थे देव साहब। 23 सितंबर 1923 को एडवोकेट किशोरीलाल आनंद के घर शकरगढ़ पंजाब में, जो पाकिस्तान में, यहाँ इनका जन्म हुआ। ये चार भाइयों में से तीसरे नंबर के। एक बड़ा भाई वहीं शकरगढ़ में पिता की तरह डॉक्टर था, बाकी तीनों फिल्मों में थे, यानी इनसे बड़े चेतन आनंद, फिर ये और इनसे छोटे गोल्डी यानी विजय आनंद। घर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बड़ा होकर एक्टर बनेगा, क्योंकि पिताजी लॉयर थे और बड़े भाई भी लॉयर थे। इनकी एक छोटी बहन है शीला शांता कपूर, जिनके बेटे मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर हैं। तो डलहौजी जो हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर धर्मशाला से इन्होंने अंग्रेजी में बीए किया। इसके बाद ये लाहौर आ गए अंग्रेजी में एमए करने के लिए। पढ़ाई तो ये कर ही रहे थे लेकिन मन किसी और चीज में था और वो थी एक्टिंग। लेकिन एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आज दीवानंद स्पेशल शो सुन रहे हैं आप। अगर कोई फरमाइशी गाने हैं आपके देव साहब के तो हमें जरूर बताएं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और सुनते रहें रेडियो मसी 24/7 लाइव।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh me
2: raho. Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
4: Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
2: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
3: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
5: GG.
3: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
5: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आपका एक बार फिर से स्वागत, वेलकम बैक सिंगापुर लेजेंड्स। फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, जहां आज के फनकार हैं देव साहब। एक्टर बनने की इच्छा लेकर देव साहब अपने पिता के पास गए और बोले कि मुझे एक्टर बनना है। पिता ने एक ही बार में मना कर दिया, लेकिन देव साहब ने तो ठान ली थी कि बस अब एक्टर ही बनना है। तो 19 सितंबर 1943 को 35 रुपए उधार लेकर धर्मदेव पिशोरीमल आनंद लाहौर से ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गए साहब। यहाँ किसी को वो जानते तो थे नहीं, लेकिन कुछ दोस्त इनके यहाँ रहते थे, तो कभी किसी दोस्त के पास तो कभी किसी और दोस्त के पास, बस ऐसे गुजारा हो रहा था, कुछ दिन काट रहे थे। एक्टर बनना था तो थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर में छोटे मोटे रोल ये करते रहे, तो यूं करते करते ख्वाजा अहमद अब्बास के लिखे नाटक जुबैदा में इन्हें एक लीड रोल मिल गया साहब, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर एक्टर बलराज साहनी साहब। 5 महीने के रिहर्सल के बाद खराब परफॉर्मेंस की वजह से बलराज साहब ने देव साहब को नाटक से बाहर कर दिया। सिंगापुर कोई और होता तो इस बात के बाद ट्रेन पकड़कर लाहौर चला जाता, लेकिन देव साहब ने ट्रेन तो पकड़ी मगर लाहौर की नहीं, बल्कि अब पुणे की। पुणे पहुंचकर ये सीधे पहुंचे प्रभात स्टूडियोज। यहाँ ये स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूराम पाई के ऑफिस में गए, और जब आधे घंटे के बाद वो बाहर निकले तो उनके हाथ में थी प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक। जी हाँ, उसके हीरो बनकर ही वहां से निकले, यानी यहाँ इनको पहली फिल्म मिल गई। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही, और न सिर्फ ये फिल्म बल्कि प्रभात स्टूडियो के बैनर तले बाकी तीनों फिल्में भी चली नहीं। उम्मीदों की पोटली लिए देव साहब फिर से ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गए, लेकिन फिर एक दिन इनकी किस्मत खुली मुंबई की लोकल ट्रेन में, जब इनकी मुलाकात हुई मशहूर राइटर इस्मत चुगताई और उनके डायरेक्टर पति शाहिद लतीफ के साथ। ट्रेन के स्टेशन के आने से पहले ही देव साहब की शोहरत का स्टेशन आ चुका था, और 1948 में शाहिद लतीफ के डायरेक्शन में आई फिल्म जिद्दी ने देव साहब के स्टार बनने की जिद को पूरा कर दिया।

0: दुनिया।
1: तो सिंगापुर पहले कुछ गाने सुन लेते हैं देव साहब के, कहानी को हम जारी रखेंगे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ, सुनते रहिए। और कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
3: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
2: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
3: One ancient warning।
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
3: And then there is a man who crosses the boundary।
5: हमें चिंता नहीं उनकी।
3: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
5: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
3: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.

वेलकम बैक सिंगापुर, यह है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो, रेडियो मसी सिंस 2009, और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से, जहां आज के फनकार हैं द बादशाह ऑफ रोमांस देवानंद साहब। देवानंद की पहली फिल्म हम एक के बारे में हमने बात की और वो फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इनको एक सच्चा दोस्त मिल गया था इस फिल्म से। दरअसल गुरुदत्त जो बाद में एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर बने, ये उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो फिल्म करते करते इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और फिल्म खत्म होने के बाद देवानंद और गुरुदत्त ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर मैं किसी फिल्म को डायरेक्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें लूंगा एज अ हीरो, यानी देवानंद साहब को। और देव साहब ने वादा किया कि अगर मैं कोई प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा तो तुम्हें फिल्म बनाने का मौका दूंगा, यानी डायरेक्शन करने का। कुछ फिल्में कर चुके थे तो थोड़ा पैसा देव साहब के पास इकट्ठा हो गया, तो साहब 1949 में इन्होंने खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसका नाम रखा नवकेतन। नवकेतन इसलिए रखा क्योंकि इनके बड़े भाई चेतन आनंद की बेटा हुआ था जिसका नाम था केतन, इसलिए नवकेतन रखा गया। इस प्रोडक्शन हाउस बनने के बाद चेतन आनंद ने डायरेक्शन की बागडोर संभाल ली, क्योंकि चेतन आनंद भी डायरेक्टर बनना चाहते थे और वो कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे। सो इस तरह इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म आई 1951 में, फिल्म का नाम था बाजी। और क्योंकि वो अपने एक दोस्त से वादा कर चुके थे देव साहब, तो इसलिए इस फिल्म का डायरेक्शन दिया उन्होंने उसी दोस्त को, यानी गुरुदत्त साहब को। ये फिल्म सुपरहिट रही और इसी के साथ गुरुदत्त और देव साहब का करियर भी चल पड़ा। वेल अभी हम भी चलते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, मतलब आप कहीं मत जाइएगा, गाने खुद ही आ जाएंगे आपके पास। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं भी लौट आऊंगा इन गानों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

सामीन का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ मैं समर लेजेंड्स वाला। रेडियो मसी 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं। ये है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009। नवकेतन के बैनर में बनी पहली फिल्म सुपर हिट रही। जहाँ आज मैं देव साहब की स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, तो इस फिल्म में देव साहब को एक ऐसा साथी मिला जो जीवन भर इनके साथ रहा। इस फिल्म में देवानंद के अलावा गीता बाली और कल्पना कार्तिक थे। कल्पना कार्तिक से ही इन्होंने बाद में शादी कर ली और इनके साथ कई सारी फिल्में भी की जो लगभग कामयाब ही रही। इस फिल्म में देव साहब और गीता बाली का एक गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था जो गीता दत्त जी ने गाया था, और ये गीता बाली के और गीता दत्त जी के दोनों के ही सबसे बड़े हिट नंबर्स में से एक है।

0: और इस फिल्म के बाद देव साहब और कल्पना कार्तिक ने एक साथ कई फिल्में की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर,
1: दिल से मिला के दिल प्यार के दे, कोई सुहाना इकरार के दे।
0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो ये बताता है कि हिंदुस्तान में, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में फिल्मों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता ही है। यानी जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कोलकाता में एक आदमी जिसकी सरकारी नौकरी थी, वो देव साहब के इस रोल से इतना इम्प्रेस हुआ कि वो नौकरी छोड़कर टैक्सी ड्राइवर बन गया। बताइए, कुछ ऐसे भी कमाल के लोग होते हैं दुनिया में। बहरहाल, टैक्सी ड्राइवर के अलावा हाउस नंबर 44, 9211 ये फिल्में उन्होंने की, और इनका म्यूजिक तो कमाल का होता था साहब। और आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि देव साहब की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा ही सुपर हिट रहता था, भले स्टोरी कैसी भी हो। इनकी फिल्मों में ज्यादातर नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर फिल्म में ही शायद एसडी वर्मन साहब का ही म्यूजिक था शुरू शुरू की फिल्मों में। बाजी के साथ जो इनका साथ बना वो फिर कभी रुका नहीं।
2: खोया

Well, it's time to take a break. लेकिन ब्रेक लेकर आता है आपके लिए गाने, इन्हें एंजॉय कीजिए और वापस आइए. समर कर रहा है आपका इंतजार रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, गानों के उस पार.

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव बना सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से जिसे सुना रहा है समर लेजेंड्स वाला। मैं आपका दोनों बाहें फैलाकर एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत है आपका। देव साहब की हम बात कर रहे हैं, एवरग्रीन देवानंद साहब की। वो एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही एक कमाल के डायरेक्टर भी थे। देव साहब ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी प्रेम पुजारी, वहीदा रहमान के साथ थी ये फिल्म। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन भैया गाने उसके कमाल थे, रंगीला रे, या फिर शोकियों में घोला जाए थोड़ा सा शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। मशहूर कवि गीतकार नीरज साहब ने इसके गाने लिखे थे, और वो गाना कैसे भूल सकता हूँ मैं, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुमको लिखी रोज पाती, आहा क्या बात है। लेकिन हुआ क्या कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी ना वो लोगों को पची नहीं, तो ये फिल्म चली नहीं। लेकिन देव साहब हार का मानने वाले थे भाई, जो इंसान सिर्फ 35 रुपए लेकर अकेला मुंबई आकर स्ट्रगल कर इतना बेहतरीन एक्टर बन सकता है, एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है इतनी जल्दी, तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो इंडस्ट्री में आए थे उसके 6 साल बाद तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था। तो साहब 1971 में देव साहब ने अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट रही और इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हर तरह से ये फिल्म कमाल की थी, और इस फिल्म के साथ देवानंद साहब बड़े डायरेक्टर्स की सूची में फेहरिस्त में शामिल हो गए।

लेकिन इस गजब की फिल्म का आइडिया देव साहब को आया कैसे? भाई ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। देव साहब की बेहतरीन फिल्मों से जबरदस्त नगमे हम चुनकर लाए हैं जिन्हें आप जरूर जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी अंकल आंटी सुन रहे होंगे जो अबव 55 होंगे, वो देव साहब की इन फिल्मों से अपनी जवानी के दिनों को जरूर याद कर रहे होंगे और इन गानों के साथ एक बार फिर से रोमांटिक हो जाएंगे। तो आइए थोड़ा और रूमानी हो जाए, ये गाने सुनते हैं। आप कहीं ना जाएं, और अगर जाए भी तो हमें साथ ले जाएं। भाई हम तो हैं रेडियो मस्ती, 2009 से लगातार आपके साथ, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र हिंदी लाइव रेडियो। स्टे कनेक्टेड।

रेडियो मंजी 24/7 लाइव पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं समर, वेलकम बैक। देवानंद साहब आज हमारे लेजेंड, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। वैसे देव साहब की जिंदगी के किस्से आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर, और अगर आपको भी कोई किस्सा याद है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वेल, हम देव साहब की दूसरी फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, हरे रामा हरे कृष्णा, उसकी बात कर रहे थे। इस फिल्म का आइडिया कैसे आया उन्हें? एक बार देव साहब के दोस्त जर्मनी से आए, जर्मन थे वो, तो वो आए और बोले कि यार मुझे ना काठमांडू में आकर मिलो। देव साहब लकीली उन दिनों में काठमांडू में ही थे, तो बोले आ जाओ यार। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में वो जर्मन दोस्त वहाँ आए, तो साहब दोनों मिले काठमांडू में। शाम को जब घूमने के लिए वो बाहर निकले होटल से, तो उनके दोस्त ने कहा कि यार यहीं पास में कुछ फॉरेनर्स आए हुए हैं जो हिप्पी कल्चर वाले लोग हैं, चलो वहाँ चलते हैं। देव साहब ने पूछा, हिप्पी ये कैसे लोग होते हैं? दोस्त ने कहा, ये लोग चरस गांजा पीकर मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, इनका एक अलग ही कल्चर है, गाते हैं बजाते हैं और वीड लेकर सो जाते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं, नहाते धोते भी नहीं, बड़ा अजीब तरीका इनका रहन सहन है। तो साहब, अब देव साहब ने कहा चलो भाई देख लेते हैं कैसे हैं ये लोग। ये दोनों पहुंच गए और वहां देखा कि इन सब फॉरनर्स के बीच में एक इंडियन लड़की बैठी है और वो भी चरस पी रही है। देव साहब ने देखा और सोचा कि यार ये कौन है जो इन गोरों के बीच में बैठी हुई है। तो देव साहब ने बारमैन को बुलाया और कहा कि यार मुझे उस लड़की से मिलना है, उससे कहो मुझसे आकर मिले। बारमैन ने उस लड़की को बुलाया और देव साहब से मिलवा दिया, और अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने अगले ही दिन की मीटिंग फिक्स की। दूसरे दिन दोनों फिर से मिले। जब देव साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि उसका नाम जसबीर है और खुद को वो जैनिस बोलती है और कनाडा से अपने घर से भाग कर आई है। देव साहब ने पूछा कि घर से भागी क्यों तुम? तो जसबीर ने बताया कि मैं बड़ी रेबेलियस नेचर की हूँ और मेरे घर वाले मुझे कंट्रोल करना चाहते थे, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे जीने नहीं दे रहे थे, तो मैं माँ से लड़ी और माँ की सेफ से कुछ पैसे चुराकर यहाँ आ गई। तो इस तरह से देव साहब ने उस लड़की की कहानी उसी के मुंह से सारी सुन ली, और कहानी सुनते सुनते उन्होंने इस लड़की की कहानी पर फिल्म बनाने की भी सोच ली। मतलब कहानी सुनते सुनते देव साहब ने एक स्टोरी लाइन तैयार कर ली थी कि उनकी फिल्म अब ऐसी होगी। तो इस तरह इस कैरेक्टर को लेकर देव साहब ने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई जो सुपर हिट रही, और इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने जिनदमान को फिल्म में लिया। तो आइए फिलहाल तो देव साहब की फिल्मों के कुछ और नगमे सुन लेते हैं। आप रहेगा सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मसी 24/7 लाइव के साथ।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
3: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
3: GG Mart, your personal grocer.
4: Some stories are easy to tell, par kuch kahaniyan dil ke andar hi reh jati hain. Ek choti si baat par parents se duri, ek pyar jo kabhi keh nahi paaye, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है. ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते. हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.

वेलकम बैक देवानंद स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। देव साहब ने सिंगापुर कई हीरोइनों के साथ काम किया और बेहद कमाल का काम किया है, जिनमें उनकी फिल्में हिट रही, यानी फिल्में हिट रही तो जोड़ी भी हिट हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये रीत से हिंदी फिल्मों में कि अगर कोई एक जोड़ी 7-8 फिल्में एक साथ कर लेती है तो वो खुद को एक दूसरे के करीब समझने लगते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? मेरे ख्याल से सच में ऐसा होता होगा। जब आप ज्यादा टाइम किसी के साथ बिताते हैं तो भाई एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, ये लाजमी सी बात है। और कुछ ऐसा ही देव साहब के साथ भी हुआ। यानी पहले जीनत अमान की बात कर लेते हैं। जीनत अमान के साथ देवानंद ने कई फिल्में की और ये मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है कि जीनत के साथ फिल्में करते करते वो जीनत को पसंद करने लग गए थे और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को रियलाइज हो गया था कि वो जीनत

0: करूंगा।
1: लेकिन फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत सोच रहे हैं, उनसे काफी छोटी हैं और उन्हें जीनत के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि देव साहब को किसी से मोहब्बत हुई नहीं थी इससे पहले, हुई है भाई, और कैसे भूला जा सकता है उस मोहब्बत को। भाई उस मोहब्बत के तो हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चे हो गए थे। देव साहब की पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ मैं। उनको पहली बार मोहब्बत हुई थी फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया से, और सुरैया भी देव साहब को उतनी ही मोहब्बत करती थी। इन दोनों की साथ में पहली फिल्म आई थी विद्या जो 1948 में आई थी। इसके बाद कई सारी फिल्में इन्होंने की जो हिट भी रही, और इन्हीं फिल्मों से इनका प्यार परवान चढ़ता चला गया और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन सुरैया की दादी देव साहब को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए इन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाई, और फिर पार्टीशन के बाद सुरैया भी पाकिस्तान चली गई।

0: फिलहाल अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिल्म 9-2-11 की शूटिंग का एक किस्सा आप तक पहुंचाएंगे। आप सुन रहेगा रेडियो मजी 24/7 लाइव सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009।
1: या जबरदस्ती करूं?
2: चाहता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
0: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
0: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
0: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
0: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा and तमन्ना भाटिया in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
0: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और शो चल रहा है देवानंद स्पेशल लेजेंड्स। फिर से ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जब लौटूंगा ब्रेक के बाद तो बताऊंगा देव साहब की फिल्म 9/2/11 की शूटिंग का एक किस्सा। बात है 1957 की। फिल्म 9/2/11 की शूटिंग थी जिसके निर्माता थे देवानंद और हीरो भी वो खुद ही थे और डायरेक्टर थे देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद। एक्ट्रेस थी कल्पना कार्तिक जिनसे देव साहब ने बाद में शादी भी कर ली थी। इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली मुंबई हाईवे पर हो रही थी। इसी दौरान फिल्म के कुछ सीन मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूट होने थे तो ये सब वहां पहुंच गए। शिवपुरी इलाका उस समय डाकुओं का इलाका हुआ करता था, मतलब इस इलाके के आसपास काफी डाकू रहा करते थे। तो दिन की शूटिंग पूरी करने के बाद शूटिंग की पूरी यूनिट एक गेस्ट हाउस में ठहर गई। रात को देव साहब के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब ने सोचा कि इतनी रात को कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, और उन्होंने डाकुओं के बारे में भी सुन रखा था तो थोड़ा डर उन्हें लगा। बहरहाल देव साहब उठे और बड़ी सावधानी से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा एक आदमी खड़ा है, काले कपड़े और बड़ी लंबी मूंछ और साथ में बंदूक। देव साहब एक बार तो उसे देखकर डर गए। जी हाँ, वो डाकू था। लेकिन फिर उस डाकू ने कहा, हम ही हैं बगड़ सिंह। देव साहब इससे पहले कुछ बोलते उसने देव साहब की एक तस्वीर आगे बढ़ाते हुए कहा, इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दो। सिंगापुर इस डाकू के जाने के बाद देव साहब की जान में जान आई। उन्हें लगा कहीं वो इन्हें किडनैप न कर ले जाए। तो सिंगापुर कुछ इस तरह के हालातों से भी गुजरना पड़ता है एक्टर्स को। लेकिन इससे भी ये पता चलता है कि कला की सब कद्र करते हैं, है ना। कला एक ऐसी चीज है जो सबको बांधे रखती है। तो इसी बात पर कुछ और गाने और उसके बाद आपसे आज की आखिरी मुलाकात करने के लिए समर लौटेगा यहीं पर।

0: आइए सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव के लेजेंड्स, फिर से मैं आज की आखिरी मुलाकात के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं? इस मुलाकात को हम देव साहब की फिल्मों की कहानी से यादगार बनाएंगे। देवानंद एक ऐसा एक्टर जिस पर ब्लैक अचकन पहनने पर, ब्लैक कोट पहनने पर बैन लग गया था। क्या कभी आपने सोचा कि किसी पर इस तरह का बैन लग सकता है? सिंगापुर, आप जरा इस बात को सोचकर ही देखिए कि किस तरह का इम्पैक्ट उनका रहता था उस जमाने में लोगों पर। इम्पैक्ट तो आज भी है, लेकिन कहते हैं कि उस जमाने में जब वो ब्लैक कोट या ब्लैक अचकन पहनकर निकलते थे तो लड़कियां चक्कर खाकर गिर पड़ती थी, छतों से कूद पड़ती थी, बैल्कनी से कूद जाती थी उनकी एक झलक पाने के लिए। देवानंद साहब हर फन मौला थे। उनका कहना था कि जिंदगी में प्यार ही सब कुछ है, रोमांस ही सब कुछ है।
1: बगैर रोमांस के आदमी भी जिंदा नहीं है। रोमांस देखिए आपके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में है, हर इंसान के है। आपके ध्यान में रोमांस है, और एक फूल के अंदर रोमांस है, किताब के अंदर रोमांस है, एक सेंटेंस के अंदर रोमांस है, दुनिया में कितनी खूबसूरत बातें हो रही है उसके अंदर रोमांस है।
0: वो हमेशा अपने आप को यंग मानते रहे और कहते रहे कि एज इज जस्ट नंबर। वो कहते थे कि दिल का जवान होना बेहद जरूरी है, अगर दिल जवान नहीं होगा तो इंसान तो बेहद जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उसका दिल जवान है तो वो दुनिया की हर खुशी को जी सकता है। देव साहब की फिल्मों की बात करें तो गाइड को कैसे भूल सकते हैं हम। ये फिल्म उन्होंने पहले अंग्रेजी में बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन फिर देव साहब ने यही फिल्म हिंदी में बनाई और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस फिल्म के चर्चे थे। वहीदा रहमान ने भी कमाल का काम किया था इस फिल्म में, और देव साहब का तो कहना ही क्या।
2: दोष मेरा था रोजी, मुनासिब तो यही था कि तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाता, अगर जाने क्या धुन थी कि अपना बनाने से पहले तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं। शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया, होश आया तो देखा जेल में।
0: इस फिल्म के भी हर गाने सुपर हिट थे। एसडी बर्मन साहब का म्यूजिक था और शैलेंद्र के बोल थे।

तो सिंगापुर ये शख्सियत बहुत बड़ी है और वक्त बहुत बेरहम बहुत कम। तो आज का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आज आपने सुना देव साहब के कुछ अनसुने किस्से। मैं फिर एक शख्स की एक शख्सियत की कहानी लेकर लौटूंगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। मैं तब तक आप कीजिए कुछ वादे, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: आना चाहिए। आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: Recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। Have a मस्ती भरा वीकेंड।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: अंता वावा, चलो आ जाओ शुरू करें अपना ये ड्रामा यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है मस्ती मैडनेस?
1: दैनिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: मैंने सोचा सुबह सुबह क्या हो गया है और रेणुका को आते ही अंतरा वाह वाह क्यों कर रही है। मैं कहा मैं तो कुछ किया नहीं, मतलब ये मतलब अच्छा नाइस नॉट बैड।
0: सुनने में अंटा वाह वाह ठीक है, अंतरा वाह वाह, लेकिन डांस के जेस्चर्स भी वही चाहिए। आ जाओ रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ बिल्कुल, 25 तारीख हो चुकी है और नौवां महीना जी हाँ समाप्त होने को आया है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक क्योंकि 10वें महीने में पैदा होने वाली हूँ मैं। ओह माय गॉड, डिलेड एंट्री क्यों अंतरा?
2: डिलेड एंट्री एंड दिस इज दैट टाइम आल्सो ऑफ द ईयर व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि अगले महीने मेरा बर्थडे आने वाला है।
0: आई नो बट यार पता है क्या हो रहा है कि ये एक्साइटमेंट ऑफ बर्थडे सीरियसली खत्म ही नहीं हो रही है यार। ऐसे क्यों क्यों है ये बीमारी?
2: आई थिंक ये बढ़ती जाती है और खत्म होनी भी क्यों चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन, दैट व्हाई। ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी टू बी बोर्न लाइक अदर्स आल्सो आर हैप्पी आई एम श्योर।
0: देन आई गो बैक ऑल दोज इयर्स जब मैं चौथी बेटी घर में पैदा हुई थी। आई डोंट थिंक आई कैन से सब इतने खुश थे। ड्रामा क्वीन जी हाँ कमिंग अप सुबह सुबह, क्योंकि एक नहीं दो दो ड्रामा क्वीनें आ चुकी हैं यहाँ पर।
2: of course.
0: है ना अंतरा?
2: ऑफ कोर्स।
0: उठ जाओ अंतरा, तुम ऐसे लग रही हो कि सो जाओगी किसी भी टाइम पर। उठ जाओ उठ जाओ।
2: सबसे बेस्ट होता है रेणुका के सामने जमाई लेना, फिर कहती है मैनर्स अंतरा, मैनर्स
0: मैनर्स अंतरा मैनर्स।
2: आप भी कर लो, लेट्स मेक द यौन संबंध।
0: ओह कम ऑन, देयर शी गोज अगेन।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ रही है मेरे अंदर एनर्जी, पता नहीं।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
3: आपको नहीं लगता कि फ्राइडे होना ही काफी होता है और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है? बोल तो फ्राइडे हम ऐसे उचक रहे होते हैं इधर से उधर।
2: डेफिनेटली फ्राइडे है तो बड़ा ही फर्क है। और अगर आप सुन रहे हैं ऑनकोर तो आप सोच रहे हैं ये फ्राइडे में क्यों जी रही हैं लड़कियां, तो वेल दैट्स बिकॉज आप ऑनकोर सुन रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, है ना भाई?
3: हाँ जी। और अगर हम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप हमारा नया रिकॉर्डिंग फीचर करके हमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस।
2: तीन तीन बार सुन सकते हैं, फिर तो चार चार बार सुन सकते हैं, क्या बात है।
3: कितनी बार?
2: उफ, बहुत ही लकी लोग हैं आप। आपने अपना ऐप बाय द वे मस्ती मीडिया 24/7 अपग्रेड किया है या नहीं किया है, और नए नए फीचरों के बारे में क्या ख्याल है हमें जरूर बताइएगा। 9151896 3। एक्चुअली मैं नंबर क्यों बता रही हूँ, टॉप राइट कॉर्नर पर व्हाट्सएप दबाइए बस बटन और भेज दीजिए हमको मैसेज और कहिए लड़कियों तुम हमारा दिल ले लिया हो, ले चुकी हो, है ना अंतरा?
3: बिल्कुल, एक्चुअली सबको दबाना इतना पसंद था तो वी मेड इट इजी कि दबाना ही तो है तो बटन दबाओ, है ना?
2: ओके एक्सक्यूज हर प्लीज, इट्स फ्राइडे।
3: यस इट्स फ्राइडे, बट हाउ अबाउट रेणुका, कोई आपको बोले दैट यू कैन रेंट योर फेस, हाउ डस दैट साउंड?
2: रेंट माय फेस मतलब रेंट इट आउट?
3: यस रेंट इट आउट।
2: नो थैंक यू। ओके
3: नो, बट चाइना में लोग ऐसा कर रहे हो और करके बहुत पैसा कमा रहे हैं।
2: करने दो, मेरी फेस सिर्फ मेरा है, मेरा पति सिर्फ मेरा है टाइप्स।
3: You all must have seen these AI dramas, okay? इसका एक ट्रेंड चला हुआ है कि AI dramas, अलग अलग तरह की कहानियां जो है वो आती ही रहती है। सो पीपल इन चाइना आर बेसिकली लाइसेंसिंग अपना अपना चेहरा AI dramas के लिए, लाइक लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि हाँ तुम बिंदास मेरा चेहरा। सो दे आर लाइक AI एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बिकॉज दे हैव अग्रीड टू रेंट देयर फेस। एंड भाई बूमिंग बिजनेस ये चल रहा है, 14-15 अब 50-50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं लोग।
2: वाओ। और दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी, वैसे हम करते नहीं है बात बॉलीवुड की, लेकिन मनोज बाजपेयी ने सू किया है कि मेरा एआई फेस यूज करना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूज करे, मैं सिर्फ ओरिजिनल हूँ। आई थिंक उसके और मेरे विचार काफी मिलते हैं।
3: यस यस बिल्कुल बिल्कुल, सारे ओजी वाले यही एजी कर रहे हैं कि हमें नहीं करना। आई थिंक आप लोगों ने इतने पैसे कमा लिए, ये तो मैं उनको भी कमाने दो।
2: देखो बहन, दुनिया में सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस प्रोफेशन में सब तो नहीं घुसते ना क्योंकि पैसे होते हैं। नहीं, पैसा हर चीज नहीं होता, इंसान के अंदर की जो कॉन्शियस होती है वो सबसे बड़ी बात है।
3: हाँ जी हाँ जी, और ये कहने में कितना अच्छा लगता है लोगों को। वेरी नाइस, वेल डन।
2: वैसे कहाँ बेच सकते हैं ये बताना जरा शक्कर।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
1: लड़की है या लड़का, दोनों ही बराबर होते हैं, है ना अंतरा? की है ना अंतरा?
2: जी जी जी जी, लेकिन लोग ऐसा भी कहते हैं कि डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन क्या है.
1: तो अगर बाल बढ़ाने हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? गुड मॉर्निंग, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती 24/7.
2: ये तो ओपन फॉर ऑल है ना, मतलब जिसको भी मन करे बढ़ा ले.
1: बिल्कुल,
2: कहा के दैट इज ऑल्सो द थिंग.
1: बिल्कुल. केरला की बात हो रही है, स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है. उन्होंने कहा कि भाई स्कूल बॉयज एंड जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चिल्ड्रन, उनको लंबे बाल करने की पूरी फ्रीडम है विदाउट फेसिंग पनिशमेंट. और नया फ्रीडम क्या है कि लड़के और बच्चे जो कि आइडेंटिफाई नहीं करते हैं विद अ स्पेसिफिक जेंडर कैन चूज देयर हेयर लेंथ एंड क्लोथिंग स्टाइल. और कोई हरास नहीं कर सकता उनको, स्कूल्स पनिश नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, मेंटली परेशान नहीं कर सकते उन बच्चों को जिनके लंबे बाल हैं. तो इसीलिए बस बाल साफ होने चाहिए, आंखों से पीछे होने चाहिए, और स्पोर्ट्स खेलते टाइम, लैब के टाइम या प्रैक्टिकल क्लासेस में सेफ्टी रूल्स फॉलो होने चाहिए. क्या ख्याल है तुम्हारा?
2: I think it's a great idea. I तो completely go with it.
1: है ना?
2: मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? ये वाली तो हक तो लड़कों को भी है. And in fact मुझे कभी लगता है कि लड़के have better बाल. My cousin brother मेरे से लंबे बाल है उसके, और क्या क्वालिटी है उसके बाल. देख देख के हमें लगता है कि भाई थोड़े दे दे, हमको ही दे दे, हमें चाहिए लंबे. But then if you maintain it well, why not?
1: Yeah, why not? अभी क्या है ना कि सिंगापुर में ऑफकोर्स छोटे बाल रखने जरूरी है लड़कों को, ऐसा रूल है. लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे कि टेक्सस है, वहां पर लोगों ने केसेस भी करे हैं जाकर कोर्ट्स में, ये बोलते हुए कि भाई ये क्या बात है, पुराने जमाने के जो लॉज है उनको बदलो, लड़कों को भी पूरा का पूरा हक है. और आपको अगर ऐसी बातें सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सजन रेडियो मस्ती 24/7 लगाइए जरा. क्यों भाई
2: शौक? और
0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: भाई ये तो बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है। एंड सब सुन लो, सारी बंदियों बंदे आराम से सुनना, सबको चाहिए ये।
1: क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो सबको चाहिए? बहन बताओ तो सही मुझे। रेडियो मस्ती 24/7 पर
2: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट एंड द फनीएस्ट।
1: बताओ बताओ अंतरा बताओ,
0: रेणुका खराटो को लेकर आपका क्या विजन है?
1: ओ गॉड,
0: व्हाट इज योर,
1: ओ गॉड, बहुत ज्यादा मेरे, मैं कह रही हूँ मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं खराटो के साथ में, स्पेशली एक हॉस्पिटल में जो मैंने एक रात बिताई थी एक बार वेटिंग रूम में, और वहां पर एक आदमी जोर जोर से खराटे ले रहा था और मुझे तक गुस्सा आया। उसको बड़े सारे लोगों ने बोला, भाई साहब आप थोड़ी चेयर अपनी बाहर रख लो वेटिंग रूम से, सबको परेशान कर रहे हो। दैट गाय रिफ्यूज्ड, मैं तो यही सोऊंगा, एंड ही डिड नॉट लेट एनीबॉडी एल्स स्लीप इन द वेटिंग रूम। एंड यू कैन इमेजिन, सुबह उठते ही ना मैं वहां से निकली और मैंने ना उसको लात मारी, क्योंकि वो सो रहा था आराम से, ठीक है, लात मारी मैंने, उसकी आंख खुली तो मैं ना बिफोर ही कुड रिएक्ट मैंने कहा इलाज करवा लीजिए, हॉस्पिटल में ही तो हैं आप। और मैं बोल के भाग गई इससे पहले कि मेरे का जवाब देगा।
0: I know, I can only imagine. So well, let us talk about the smart bed का ये invention. So ये जो smart bed है, it automatically separates the couple. जब भी इसके built-in sensors है, वो detect करते हैं अगर किसी ने snore करना शुरू किया, ये smart bed automatically separate कर देता है couple के बीच एकदम। And the mattress slowly divides into two sections and moves the snoring partner several feet away without waking either.
1: और कमरे में जगह ना हो तो
0: वो अलग बात है। एंड इट रीकनेक्ट इन द मॉर्निंग बिफोर दे वेक अप, सो बेसिकली दोनों पार्टनर्स प्रिटेंड दैट दे हैव टू स्लीप ऑल डे।
1: इसको इसको पुराने जमाने में हॉन्टेड बेड कहा जाता था। ओके ये नए जमाने में, कम ऑन, सोचो,
0: आई नो,
1: सोचो,
0: मैंने हाउ आर थॉट्स आर इन ऑलवेज सिंक रे रुका, मेरा एग्जैक्टली सेम ख्याल आया कि भाई हॉरर मूवीज में हमने देखा हुआ था कि बेड बीच में से ऐसे अलग अलग हो रहे हैं।
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जहाँ है हमें वही सो के उठना है, और हमारे पास ना हमारे हाथ पैर हैं जो परेशान करता है, हम उसको लात मार के गिरा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करने दो।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM onwards, CSE Auditorium, Tessensohn Road. Tickets $60 onwards. Contact and pay now 8138-2790. Ishq Sufiana, Ishq Sufiana by Amit Dhamelia.
1: It's a Masti Partner event.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आज की जिंदगी में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक की नौकरी अगर किसी इंसान को करनी पड़े डे आफ्टर नाइट, तो वो नौकरी छोड़े तो कुछ गलत बात है या सही? अंतरा, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ?
3: Setting the perfect hot temperature for Friday.
4: ना हो पाई ब्रो, ना हो पाई.
2: नहीं ना, बिल्कुल नहीं. I agree with you, totally 100%. लेकिन यहाँ पर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करना चाहेंगे on Radio Musty 24/7. This is Musty Madness. अबे क्या है कि आप कहते हो कि मैं नहीं काम कर सकता, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी. एंड यू आर राइट इन सेइंग दैट, राइट? बिकॉज आप मतलब यू हैव टू लीव दैट जॉब. तो एक सिंगापुरियन आदमी ने ये बड़ी ही मुश्किल से ये बात सीखी कि भाई ये नौकरी छोड़ के उसने गलती करी है या सही किया. ही वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स और उसने नौकरी छोड़ दी इसी वजह से. अब तुम सोचो उसके बाद अब तक जुलाई 2026 तक से जो उसने नौकरी छोड़ी, अब तक उसको 30 जॉब ओपनिंग्स के लिए वो अप्लाई कर चुका है और एक इंटरव्यू मिला है जिसमें कि वो रिजेक्ट हो गया. तो वो कह रहा है कि भाई अब 6 महीने होने को आए हैं मेरे जिंदगी के, मैंने सही किया या नहीं किया? तो भाई आप बताइए, आप बिना नौकरी के रहना पसंद करेंगे या फिर आप 10 बजे से सुबह रात के 2 बजे तक नौकरी जब आपकी होगी तो आप कहेंगे वाह एटलीस्ट आई हैव अ जॉब. बहुत बड़ा डिसीजन है भाई साहब, तुम क्या करोगे?
4: मैं लिखूंगी जी हाँ मस्ती, आई हैव समथिंग टू से.
2: इसीलिए ये प्रोमो ही था, ये प्रोमो ही था हमारे शो का डियर मस्ती दिल से. आप हमें लिख सकते हैं अपने दुख बांटने के लिए, हम आपको उसका जवाब भी देंगे. क्या देंगे दैट डिपेंड्स, सो राइट टू अस 9151896 3, बस वही बटन जो कि आपके ऐप में टॉप राइट पे है, भेज दो और सुनो सारी दुनिया के दुखड़े और उसके बाद हमारे ग्लोबल जवाब.
1: Oh yeah, it's the one that we're not saving, y'all.

0: और हमारे दूसरे घंटे में जी हाँ अजीबोगरीब खबरों की जो ये बारिश होती है वो होती है हर फ्राइडे को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। इसे कहते हैं हम मस्ती मैडनेस।
1: Setting the perfect hot temperature.
2: Nothing right we talk about right इस वाले इस शो में। अच्छा भाई ये जो हर जगह पर एक वेट लिमिट दिया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कुछ सोचकर ही दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
2: कि अगर इसके बाद भी तुमने उसमें बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव फन, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा।
0: सही कहा।
2: ठीक है आइए आपको ले चलते हैं मायामी के एक बैचलर पार्टी पे।
0: ठीक
2: है आप क्या है कि ये जो फ्रेंड्स का ग्रुप था इनको बैचलर्स मनानी थी, एक अनमैन्ड यॉट जो है इन्होंने रेंट की। अब बोट के ओनर ने उनको बोला हुआ था कि इसका वेट लिमिट है स्ट्रिक्ट 9 people only।
0: ओके
2: ठीक है
0: ठीक है।
2: अब उन्होंने कहा यार बैचलर्स पार्टी है, हम क्या सिर्फ लड़के लड़के पार्टी कर, मतलब बैचलर्स है यार ऐसे थोड़ी ना होता है,
0: बनता है
2: ना?
0: बनता है।
2: तो क्योंकि बनता है तो भाई ये जो है 8 बंदे तो थे ही थे, बट दिस ग्रुप इनवाइटेड अराउंड मोर देन डजन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स ऑन टू द बोट कि ज्वाइन करो हमारा सेलिब्रेशन। फुल स्केल पार्टी, दारू पे हाय, दूसरी चीजों पे हाय, मतलब फार टू मेनी पैसेंजर्स, जहां पे इन्होंने बोला हुआ था कि सिर्फ 9 लोग होने चाहिए। नाउ द एक्सेस वेट के चक्कर में इन्हें की यॉट गई डूब, लाइक पलट।
0: ओप्स ओप्स,
2: सारे के सारे पानी में, एंड दे हैड टू वेट टिल द रेस्क्यू टीम एक्चुअली केम।
0: ओ बच गए
2: भाई। okay. हाँ लेकर आए, बट बोट के ओनर जो है उसको तो जो चार्जेस लगे ले इन लोग पे केस ठोक दिया गया है कि भाई मैंने तो तुमको बोला ही था और तुमने कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो साइन वाइन करते हैं ना भाई,
0: exactly.
2: ये 8-9 लोगों का है, उनको कोई फर्क ही नहीं। कहता 8-9 बंदों में बैचलर्स कौन करता है, एटलीस्ट यू शुड हैव मेड श्योर दैट ओनली 8 of us और 9 of us वर स्टिल देयर ऑन द बोट, बाकी डूबे तो डूबे।
0: भाई साहब लॉजिक, हम सबको लगता है कि हमारा ही सही है, है ना?
2: हमारा ही सही है।
0: बात हो रही है लहंगे की। हाँ बिल्कुल। तो अगला जो हम यहाँ पर चलाने वाले हैं वो है वी इंडस का बॉलीवुड का डांडिया, तो उसके बारे में भी सुन लें और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अपने लहंगे तैयार करके रखें क्योंकि डांडिया में लहंगा नहीं है तो उफ बहुत पड़ेगा महंगा।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
4: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Suat! Join kariye inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210.
5: Chhora ganda thaiyo!
4: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: to Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बड़े ही टंटे आए हैं जिंदगी में जब से वर्क फ्रॉम होम का टंटा शुरू हुआ है. जी हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेणुका एंड अंतरा एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती मैडनेस ऑन मस्ती 24/7.
0: दे मेक फ्राइडे मॉर्निंग्स द फंकीएस्ट.
2: आओ जी आओ, आपके फ्राइडे मॉर्निंग को ऐसा तड़का हम लगाने को तैयार है कि आप जानते तो हो क्योंकि सुनते तो
1: और यहीं पर आपको मिलती हैं वो सारी खबरें जो कि आपको करती हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि एक एक खबर जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं बाद में. एंड हम आपको शर्त लगा के कहते हैं कि कोई भी खबर आप बिल्कुल सर्च करके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये सारी खबरें बिल्कुल 100% सच्ची हैं. सो 23 एम्प्लॉय
2: घटना पे आधारित.
1: तो अब ऐसा है अंतरा कि एक बॉस ने हाल ही में ये बोला कि भाई तुम घर से काम करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन एक ही सिर्फ काम करना है तुमको. देर आर मैंडेटरी लैपटॉप कैमरास जो कि मॉनिटर करेंगे आपकी स्ट्रिक्ट प्रोडक्टिविटी रिमोटली जब आप काम करेंगे. ऑलराइट, तो आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो हमेशा ऑन रहेगा और वो आपकी प्रोडक्टिविटी और की स्ट्रोक ट्रैकिंग, कितने की बोर्ड पे आप स्ट्रोक मारते हैं, एवरीथिंग. सो देर इज एक्टिव एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन. पहले ही हफ्ते में 23 एम्प्लॉयज रिजाइंड. क्योंकि तो मुझे बताने की जरूरत
2: है. I would have also.
1: Exactly. तो उसने कहा ये क्या बात है, क्योंकि जो बॉस है उसने ये कहा कि देखो भैया मैं तो कह रहा था बड़े सारे लोग छोड़ के जाएंगे जैसे ये पॉलिसी आएगी, क्योंकि दे आर लेजी पीपल एंड दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी बट दे डू नॉट वांट टू शो प्रोडक्टिविटी. तो क्या
2: दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू पुट अ सीसीटीवी ऑन अस, हु आर यू.
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि तुम ऐसे किसी के घर के अंदर तो नहीं घुस सकते हो भाई साहब, है ना. बाकी ठीक है, टाइम शीट भरवा लो. सबसे ज्यादा परेशानी है तो टाइम शीट भरवा लो, ज्यादा ज्यादा बोलो क्या किया तुमने एक एक मिनट, थोड़ी मेहनत तुम भी करो. सिर्फ टीवी तो नहीं देख सकते ना बैठ के पूरे दिन ऑफिस में.
2: हाँ हाँ, और जैसे मेरी स्कूल की प्रिंसिपल जो है ना वो बड़ी कूल सी थी, तो शी ऑलवेज यूज टू टेल अस, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स है जिनको एकदम रूल को बेंड एकदम नहीं करना है, वो हमेशा उनसे कहते थे समथिंग्स यू हैव टू लेट गो, चूज योर बैटल्स. हर चीज में स्ट्रिक्ट होने का जरूरत नहीं है, कभी exactly. कभी जाने भी देना चाहिए.
1: या और अगर इतनी परेशानी है तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी कैंसिल कर दो, बोलो सब सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे. बट दिस इज नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ 23 ने छोड़ा, मैं हैरान हूँ कंपनी नहीं बंद हुई.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: क्या हो गया है बॉसेस को? मतलब सब बॉसेस को ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं कि बॉसेस भी समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है.
2: आई एम हर कोजॉक टुडे एंड दिस इज मस्ती मैडनेस.
0: डेमिक फ्राइडे मॉर्निंग्स द
2: आरजे रेणुका एंड आरजे अंतरा ओनली बॉलीवुड मीडिया प्लेटफॉर्म अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया. दिस इज मस्ती 24/7. एंड दिस इज नॉट ए आई. हाँ जी बताओ क्या हो गया, क्यों बॉसेस के पीछे पड़ी हो सुबह सुबह तुम?
1: हाँ कहानी आपने शुरू की है तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है कि मैं अपनी ये वाली खबर यहाँ पे सबको सुनाऊं. भाई ये जो बंदा है ये इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, ठीक है. अब ये क्योंकि इसका इंटरव्यू 2 बजे से होना था तो ये 30 मिनट पहले पहुंच गया. होता ही है कि आप थोड़ा सा यू नो पहले पहुंच जाओ एंड एवरीथिंग. बट प्रॉब्लम ये हुई, जो सीईओ है वो आया अराउंड 3:10 पर. एंड जब जैसे उसने कहा लेट्स गेट स्टार्टेड, ये बंदा चला गया. ही जस्ट लेफ्ट and then he sent an email. Reason for my rejection of your interview.
2: Kya?
1: Dear CEO, I arrived 30 minutes early for a 2 p.m. interview. You showed up at 3:10 p.m. No apology, no explanation, just a casual let's get started. So I left the interview as soon as it started. I felt I was being taken for granted. If this is how my time is treated before I join the company, I can only imagine what happens after I join. So I rejected you and your company.
2: इसको उससे मिलवा दे जिसने नौकरी छोड़ी थी बिग फोर की और 6 महीने से ढूंढ रहा है.
3: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल.
2: हम मैच मेकिंग का काम शुरू कर देते हैं. जी हाँ भाई साहब, आपने ऐसा स्टेप लिया है, आपको हम उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया था. लेकिन उसके बाद
1: और क्वेश्चन कर रहे हैं और डियर मस्ती को लेटर्स लिख रहे हैं.
2: और फिर उन सबको उन 23 एम्प्लॉइज से मिलवाते हैं जिन्होंने कैमरे की वजह से छोड़ी थी नौकरी.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Okay, Antra, the next khabar that I'm going to tell you, okay, is kind of, okay, it's a serious thing to talk about, but I don't want to be serious this morning. So, isliye main chahti hu ki usi pe mere kuch vicharon ko main prakat karu aur tumhare vichar bhi main sunu. Baat karne wale hain hum Mukti Bhavan ki, jo ki Varanasi mein hai. Good morning.
0: Setting the perfect hot temperature for Friday. मस्ती मैडनेस.
1: जी बिल्कुल, मस्ती मैडनेस पर आपका स्वागत है. अंतरा, तुमने सुना है मुक्ति भवन के बारे में वाराणसी के?
2: जी जी जी बिल्कुल सुना हुआ है. Okay. बताएं क्या क्या मुक्त, किससे मुक्त करने वाले हैं?
1: जी बिल्कुल, तो बताना चाह रही हूँ आपको कि काशी लव मुक्ति भवन जो है, इट्स अ चैरिटेबल हॉस्पिस जो कि लोकेटेड है वाराणसी में. और वहां पर क्या होता है कि एल्डरली या बिल्कुल टर्मिनली इल जो लोग होते हैं वो अपने लास्ट फाइनल डेज मोक्ष के लिए वहीं पर स्पेंड करते हैं. सो इसको डेथ होटल भी कहा जाता है. फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, बिकॉज रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन वेंट देयर एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट इट, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि नहीं वहां पर लोग मरने के लिए आते हैं. मतलब बेसिकली मरना इन द सेंस कि आप मोक्ष प्राप्त करते हैं वाराणसी के वहां पर, राइट? सो विच इज अ ब्यूटिफुल थॉट इन हिंदू रिलीजन एंड माइथोलॉजी. बट आगे की बात ये है भाई साहब कि अगर आप उन 15 दिनों में नहीं निकले, मतलब कि आपको वहां पर 15 दिन अलाउड होता है रहने के लिए, ठीक है? और अगर आप उन 15 दिन में मोक्ष आपने प्राप्त नहीं किया तो आपको छोड़ना पड़ता है उस जगह को. ओके
2: अच्छा
1: जी, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 रुपए का नॉमिनल चार्ज है वहां पर अकोमोडेशन का, ठीक है ना? और अगर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ऊपर से, वट एवर. बट इट्स नॉट अ समथिंग कि जहां पर आप आके अच्छा भी चलो सस्ता रहन सहन मिल रहा है तो 15 दिन यहाँ निकाल आते हैं टाइप्स नहीं है. आपको 15 दिन में मरना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप नहीं मर रहे हो तो आपको निकाल दिया जाएगा वहां से फिर. मतलब दिस इज नॉट सो, आप बिल्कुल एंड में आ सकते हो वहां पर. ओके,
2: व्हेन यू नो दैट यू नो कि एकदम मतलब श्योर, बेसिकली श्योरिटी लेके जानी है.
1: हाँ, तो कमरा, क्लैरिटी आपको कमरा मिलता ही तब है जब डॉक्टर कहता है कि 15 दिन से आंसर नहीं चल सकता इंसान. तो हाँ, मैं सोच रही थी कभी एयरबीएनबी में किसी और के लिए बुकिंग करा सच अ बैड थॉट है ना,
2: ठीक है?
1: सच अ इविल थॉट आई जस्ट गॉट. बट एनीवे, किसी ने देखा है क्या? ये देखा है तो तुम वापस आ गए.
2: आई हैव नो, सीरियसली.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: They are fresh. They are.

0: दांतों में दर्द, बड़ा ही पेनफुल दर्द होता है, दांतों का दर्द।
1: यार पता है मेरे को बड़ा गंदा लगता है डेंटिस्ट पे जाना। आई हेट इट, मुंह खोल के बैठे और वो अंदर घुसा घुसा के कुछ ना कुछ। आई जस्ट डोंट लाइक इट।
2: Dimmick Friday mornings, the funkiest and the funniest.
1: It's definitely one of the most irritating things to do, just getting your teeth cleaned or whatever. On Radio Masti 24/7, this is Renuka and Antara on Masti Madness. Sorry, hasri hai. Zaroor, main isko bolne nahi dungi. Abhi kuch bolegi, pakka kuch aisa bolegi.
0: नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जब डेंटिस्ट के एग्जामिनेशन हो रहा तो वो डेंटिस्ट उन्हीं को मनना चाहिए, या तो दे स्मेल अमेजिंग और दे लुक अमेजिंग। बिकॉज जब तुम्हारा चेहरा और तुम मुझे इतने ही करीब आ रहे हो तो माइट एज वेल हैव समवन गुड टू लुक
1: एट। सही बात है, क्राइटेरिया होना चाहिए।
0: ऑकवर्ड पोजीशन, वो भी मुंह खोल के।
1: लेट्स नॉट गो देयर। क्या हुआ तुम्हारी न्यूज का, क्या हुआ ये बताओ तो।
0: न्यूज कुछ ऐसे हुई कि एक प्रिजनर था, ठीक है, स्वीडन की बात है। उसको ना दांत में दर्द शुरू हुआ। उस चार दिन से बोले जा रहा है कि भाई मेरे दांत में दर्द है, मेरे को दिखा दो दिखा दो दिखा दो। तो इन्होंने माना नहीं कि ठीक है हो जाएगा, ठीक होता है ना, यू समटाइम्स ट्रीट प्रिजनर्स लाइक दैट, क्या ही हो जाएगा, ठीक है ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो दवाई ले ले, पेन किलर ले ले। तो ये भाग गया प्रिजन से। जी हाँ, गया डेंटिस्ट के पास। बिकॉज ही कुडंट स्टैंड द पेन, गया उसने अपना दांत निकलवाया एंड देन वो खुद ही वापस आ गया जेल। खुद वापस आ गया,
1: ऐसे जैसे घर से गया था टाइप्स।
0: करेक्ट, पहले तो वहां से भागा, भाग के अपना ट्रीटमेंट कराया, फिर खुद ही वापस आ गया वॉलंटरली।
1: एक्चुअली व्हाट अ सिंसियर गाय, राइट? कितना मेरे को खुशी हो रही है कि दुनिया में आज भी ऐसी इंसानियत बाकी है। मतलब ये डाकू भाग भी तो सकता था, ये क्रिमिनल जेल से भाग भी तो सकता था।
0: ये स्वीडन में हो सकता है।
1: सही बात है,
0: मेबी नहीं हो सकता।
1: मेबी दैट्स बिकॉज़ द स्वीडिश जेल्स आर सो कंफर्टेबल, वो कहते छोड़ना यार यही चलता।

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 पर हम हैं आपके साथ सुबह 7 बजे से, और आपको सुना रहे हैं दुनिया भर की इधर उधर की ऐसी बातें विच आर टोटली अमेजिंग।
1: Setting the perfect hot temperature for Friday.
2: और ये ऐसी बातें हैं कि आपको लगेगा कि ये शो कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। 3 घंटे बहुत कम होते हैं।
0: उफ, सही कहा बहन, तुमने सही कहा। अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जापान, ठीक है? और जापान की एक बड़ी बहुत ही मतलब हिंदुस्तानी कल्चर से मिलती जुलती बात, ठीक है, जो कि मैं बताना चाहूंगी। वेल मे बी नॉट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली जब तुम और हम है साथ में तो बात निकाल ही लेंगे हम। सो अब क्या है जापान में, क्या होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या हाई इमोशंस हो जाते हैं कपल्स के बीच में, ठीक है, कि तू और मैं लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं या जो भी है, तो वो चीखते विकते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करते, दे डोंट ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट बिकॉज दे फॉलो अ सर्टन कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है मैं बताती हूँ। जब उनकी लड़ाई होती है या ऐसा कोई मौका हो जाता है जबकि बिल्कुल हाई इमोशंस हो जाते हैं और वो एक दूसरे का खून करने वाले होते हैं, तो वो कहते हैं ओके लेट्स टेक 3 मिनट्स ऑफ माँ, MA, ओके
2: ओके,
0: कोई फोन और स्क्रीन नहीं, कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं टू रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर, कोई बात नहीं, कोई विस्परिंग नहीं, जस्ट शेयर्ड साइलेंस एंड ब्रीदिंग जब तक कि हार्ट रेट और फिजिकल स्ट्रेस सेटल हो जाए। इसको कहते हैं 3 मिनट्स ऑफ माँ, MA। मैं अब बात रही कि भाई सिमिलैरिटी क्या है और अंतरा क्योंकि हंस रही है भैया हम भी लेते हैं 3 मिनट्स ऑफ माँ जिसकी वजह से हो रहे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हम कहते हैं आ तेरी माँ
2: I was like it was right here कि भाई हमारे तो जैसे ही आपने बोला मैंने कहा कि माँ के बाद बाद वाला गाय
0: भाई 9 बजने के इस बार बिल्कुल हमें आपके साथ
2: incomplete है, incomplete है my lord
0: बाकी का हम माइक ऑफ करके डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 प्रणाम

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Good morning once again and welcome back. Radio Musty 24/7. Kya chal raha hai antra show ka naam kya hai?
3: शुक्रा में मस्ती मैडनेस। हमें पिछली बार में पूछना चाहिए था कि सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हम ही कर रहे हैं कि बाकी भी सुनने वाले भी कर चुके हैं पिछली वाले खबर में।
2: मैसेजेस देख के लगता है काफी ध्यान से सुन रहे हैं सब। कह रहे हैं हमारा नाम मत लेना पर हम माँ बाप सबको याद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया,
3: बिल्कुल करना है। हाँ, we must remember them with their relationship with us. So well, आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी खबरें is like, अभी पहले एक प्रिजनर था जो करा के अपना वापस आ गया जेल में खुद ही वॉलेंटरली। अब ये चोर है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। डिफरेंस देखिए यहाँ पे, चोरों को कितनी इज्जत दी जाती है मस्ती मैटर्स पे। तो भाई ये बंदा घुसा किसी के घर में चोरी करने के लिए,
2: ठीक है,
3: एंड ही एंडेड अप स्मैश फिश बोल, मतलब वो गोल वाला होता है ना जिसमें एक गोल्ड फिश तैर रही होती है।
2: हाँ हाँ हाँ।
3: तो वो उससे टूट गया।
2: ओके।
3: अब उसने कहा कि ये तो मेरे प्लान में था नहीं, बट उसका दिल जो था ना रेणुका, बहुत बहुत अच्छा था, भले ही वो चोर था।
2: ओके।
3: उसने वो फिश उठाई।
2: हाँ।
3: वो जो सिंक होता है ना, सिंक को प्लग करके उसमें पानी भर के वो मछली को उसमें जिंदा छोड़ के गया। चोरी सब करके लेके गया बट मछली की उसने जान बचाई।
2: मैं बता रही हूँ, मेरा दिल ले गया ये सीरियसली। कितना अच्छा आदमी निकला ये। हाँ,
3: बहुत अच्छा आदमी, बहुत। भले उसने चोरी की बट आप दिल देखे उसका, दिल।
2: बिल्कुल सही बात है। तो अगली बार आप चोर की चोरी ना देखे, आप दिल देखे उसका, दिल
3: दिल देखे।
4: आया
2: क्या गाना है कल रात जी, लेते छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, वापस आगे बात करेंगे शार्क्स की। ठीक है अंतरा, क्या तुम तैयार हो? आज जानवरों की बात ही नहीं करी हमने।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you. This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. Hello! The Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
4: Suat.
1: Join Kariyan ka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call
5: 9022-1210.
1: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: भाई साहब, आप किसी से भी पंगा लें, लेकिन अगर आप एक एक्वेरियम के अंदर रह रहे हैं तो शार्क से पंगा ना ही ले तो अच्छा है। यही हमारी तरफ से आपके लिए क्या है एडवाइस है।
1: Setting the perfect hot temperature.
0: पानी में रह के मगरमच्छ से तो मैंने सुना है, लेकिन शार्क से नहीं सुना। तूने सुना है क्या ये?
2: जनरली भी शार्क से पंगा नहीं ही लेना चाहिए। मतलब ये हमें सिखाया गया है। उनके दांत नहीं देखे, बाप रे बाप।
0: लेकिन इंसान
2: जॉज मूवी याद आ जाती है मेरे को तो।
0: आई नो, लेकिन इंसान की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि फीमेल शार्क से मेल शार्क भी पंगा नहीं ले सकता। पूछ कैसे?
2: जनरली भी नहीं लेना चाहिए, बाय द वे, इन ऑल स्पीशीज।
0: इसके अंदर की आत्मा, औरत की आत्मा जाग जाती है। मैंने फीमेल क्या बोला? नहीं, मैं चाहे शार्क फीमेल है चाहे इंसान फीमेल है, मैं झंडा लेके खड़ी ही खड़ी हूँ। सो भाई, एक 8 साल की फीमेल सैंड टाइगर शार्क, उसने एक 5 साल का वही हाउंड शार्क को खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि उन दोनों को सोल के एक्वेरियम में रखा गया था। अब रखा तो गया है भाई, अब वो छोटा वाला मेल जो है बेचारा, उससे 3 साल छोटा है, उसको नहीं आती स्विमिंग अच्छे से। वो बार बार जब घूम के आता था एक्वेरियम में, वो उसके साथ उसकी टक्कर हो जाती थी। ठीक है, अब टक्कर हो जाती थी तो वो फीमेल चिढ़ गई। उसने कहा मैं इसको खा जाऊंगी, और 21 घंटे लगा के उसने उसको कंप्लीटली स्वॉलो कर लिया। सिर्फ उसकी पूंछ का जो टिप है वो उसके मुंह से बाहर निकलती हुई रहेगी, बाकी सारा अंदर गया वो। मतलब टेरिटोरियल वॉर कहते हैं इसको। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में अंतरा?
2: भाई टक्कर अब टैंक के अंदर हो या रोड पे हो, टक्कर मार के आप जा नहीं सकते।
0: एक्चुअली मुझे कई बार लगता है कि वो जो लड़के चीप वाले हमको सड़क वाले छेड़ना टाइप्स जो होते थे
2: या।
0: एक जमाने में जब हम जवाब नहीं दे पाते थे, अगर हम खा पाते उनको
2: तो खा ही जाते ना।
0: शार्क
2: मतलब दैट वुड एनी नॉर्मल शार्क और एनी नॉर्मल ह्यूमन शुड डू।
0: एक्जेक्टली, करना भी चाहिए ना। और इस शार्क ने थोड़े दिनों के बाद में जो ऑर्गन उसके नहीं हो पाए डाइजेस्ट, उसने वो थूक दिए साइड पे टैंक में। आई विश वी हैड दोस पावर्स। या खा जाते हम ऐसे लोगों को। हाँ,
2: अग्री अग्री, टोटली अग्री। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस शार्क।
0: गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक? इफ यू अग्री कि हमारे में ऐसे पावर्स होने चाहिए तो राइट टू अस 9151896।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रशेबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th to 25th September। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: क्रशेबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: भाई एक बात तो है अंतरा, हाल ही में जो हमने बैकस्टेज सिब्लिंग्स के साथ में मस्ती एवीआई पर बात करी थी ना, मजा आ गया यार, मजा आ गया। दे सो ग्राउंडेड, दे सो मतलब कितने अच्छे लोग होते हैं ना ये जेन जी के आर्टिस्ट, दे हैव नो एयर्स अबाउट देमसेल्व्स।
0: Setting the perfect hot temperature for
2: मैं तो उनसे आते ही पूछा, ये जो सबको लग रहा है तुम दोनों में इतनी बनती है, इतने सिंग में हो, पहले मेरे को पहले तो सच्चाई बताओ क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, आठवा नौवा जुवा जो है, हाउ आर यू मेकिंग इट पॉसिबल। बट देन वी रियलाइज दैट दे बोथ आर लाइक एनी अदर सिबलिंग्स एज वेल, बट दे आर सो गुड। लाइक इम्प्रॉम्प्टू भी उस टाइम पे उन्होंने मस्ती एवीआई पे क्या मस्त जैम किया, नॉट ओनली द भजन जैमिंग बट ऑल्सो मतलब उन्होंने सूफी गाना भी अचानक से किया, हमारे एक लिसनर ने पूछा तो दे जस्ट सैंग इट ऑन द स्पॉट, इट वाज सो अमेजिंग। एंड दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट वंस यू आर देयर बैकस्टेज सिब्लिंग्स जो कि होने वाला है 26th ऑफ सितंबर, इट्स जस्ट राइट हियर, अगर आपने टिकट ले ली है यू आर गोइंग टू हैव द मोस्ट ऑसम टाइम ऑफ योर
1: लाइफ। बिल्कुल, और अगर टिकट नहीं ली है तो वेल हमारे साथ जीत ली है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जीती है तो भी ले लो टिकट इस समय पे। बिल्कुल, फैमिली डिस्काउंट तो इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, आई हैव टू टेल यू दैट। एंड यू नो
2: या दैट इज ट्रू,
1: या द ग्रेट थिंग इज दैट ये जो शो है बैक स्टेज सिबलिंग्स का, इट इज लाइक आप स्पिरिचुअल एक दुनिया में चले जाते हैं फॉर 2 hours, राइट? आप अपने फोन रखते हैं साइड पे, आप सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते हैं, साथ में गाते हैं। अब आप उसको भजन मानिए या आप उसको एक तरह की जैसे कहते हैं ना, जस्ट बीइंग लॉस्ट विद अ क्राउड,
2: लाइक दे सेड दैट यू विल बी जस्ट इन द मोमेंट, उस मोमेंट को आप जियोगे।
1: बिल्कुल, जो कि जिए हुए पता नहीं हम कितना टाइम हो गया है दैट वी हैव नॉट लिव्ड इन द मोमेंट, राइट? वी आर ऑलवेज गॉट दिस फोन इन आवर हैंड, सम डिवाइस और समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड, तो स्विच ऑफ कीजिए। बिल्कुल जाइए, फोन स्विच ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, अपना माइंड स्विच ऑफ की बात कर रही हूँ, विच इज लाइक रियली अनहर्ड ऑफ इन टूडेज वर्ल्ड। बट गो फॉर इट, बैकस्टेज सिबलिंग्स विच इज ऑन 26th ऑफ सेप्टेम्बर। अगर आप इस समय फ्राइडे को ही हमारा शो सुन रहे हैं लाइव, तो फिर डेफिनेटली टिकट जाके सिस्टिक से ले लीजिए एंड बी देयर, डू नॉट मिस इट, आई प्रोमिस यू, यू विल नॉट रिग्रेट इट, नॉट रिग्रेट इट। गुड मॉर्निंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: And it's time for us to say bye bye. लेकिन अंतरा, इस वीकेंड तुम और मैं कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल, है कि नहीं?
2: Of course.
0: They make Friday mornings the funkiest.
2: करना ही चाहिए, क्या करे. मतलब सिंगापुर के सारे इवेंट्स इतने खास खास जो यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. हाँ, पर तो सब जानना है.
1: हर जगह. और भाई क्या है कि हमारी मस्ती की टीम ऐसी ही रहती है भाई, इतने इवेंट्स होते हैं, इतनी अच्छे अच्छे शोज हो रहे हैं अभी से लेकर साल के एंड तक कि लगता है यार कुछ भी मिस नहीं हो सकता. सो वेल, जहां पर एक इंसान जाएगा बैक स्टेज सिबलिंग्स विच इज एन अमेजिंग अमेजिंग इवनिंग एज वी जस्ट मेंशनड, वहीं पर दूसरा इंसान जाएगा इश्क सूफियाना. तो भाई आपको अगर इश्क सूफियाना की टिकट्स चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं राइट अवे एंड वी विल ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू गेट द टिकट्स फॉर टुमारो. दिस इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग विद अमित धमेलिया जी. जी हाँ, जहां पर बॉलीवुड से लेके सूफी से लेके हर तरह के गाने होंगे एंड ऑफ कोर्स येट अगेन इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट मिस. राइट अंतरा,
2: माहौल इज द मेन थिंग. लाइक जब आपका लाइव बैंड होता है, यू हैव रियली गुड सिंगर्स एंड एवरीबॉडी कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग दैट माहौल फॉर यू, एंड इट काइंड ऑफ इज अ स्ट्रेस रिलीवर एंड especially Saturday evenings go. It's like very very nice.
1: Absolutely. और हम तो कहेंगे पार्टी हॉपिंग करो, इवेंट हॉपिंग करो, इतने सारे इवेंट के दिन में कि एक जगह जाओ एक घंटा, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाओ, दोनों का लुत्फ उठाओ. जी हाँ, और अगर आपको हमसे पूछना है कि भाई हम कहाँ जाने वाले हैं तो हमें मैसेज लिखो राइट अवे.
2: गेस करो.
1: या फिलहाल के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ पर, और जहाँ भी आप जाएंगे हम वहाँ आपको जरूर आप हमें पाएंगे. क्यों भाई, सही है कि नहीं?
2: वाह वाह वाह वाह अंतरा, वाह वाह.
1: ऑलराइट, सो चलो अब मैं जा रही हूँ. बाय बाय एंड हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द फ्राइडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई विल सी ऑन मंडे एज ऑलवेज.
2: As always, जनता जानती है, जनता जानती है.
1: इसे कहते हैं प्रोवोकेशन, इसे कहते हैं कीड़ा, इसे कहते हैं तुनकबाजी. All right, see you guys. Have a fantastic day ahead. Bye, Antara.
2: Bye-bye.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
5: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
6: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग।
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है। मुझे चांद पे ले चलो। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू रात अकेले है। The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing Island Wide on 25th September at the cinemas near you.
4: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

सांसों में तूफानों का डेरा,

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा मैं, हूँ खुद से अलहदा, ये आधा सा दिल मैं कैसे बसाऊँ।

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: 46 है एक जज्बा है, जुनून है एक रुतबा है, फोर्स बगावत है एक पागलपन है, शहादत है एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज मेरी आवाज हम सबकी आवाज, 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: टूना, ओ टूना।
2: क्या रे?
1: मैं

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: नहीं सुनी, तुम झूठ बोलती हो, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो।
2: नहीं
1: तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भर दिए तुमने?
2: अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर?
1: नहीं चीनी, खा मेरी कसम और कह दे कि यह तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तू मुझसे प्यार नहीं करती।
2: मैं झूठ कैसे बोलूं?

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you. It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

जगाती है कयामत कोई।

0: इस वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वॉज अ गर्ल, इस वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Mercy 24/7 Live. Have a musty bhara weekend.

0: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: Lamborghini tak thelaunda phire gediyan jariyan ni jandiyan friend mithu teriyan Lamborghini